वंदे मातरम।

सुप्रभात, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय सुबह की 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव

0: समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माही, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है ज्ञान ज्योति। गलतियां वही करते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं। असफलता भी एक बहुत बड़ी सीख है। गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। वे हमें अनुभव देकर जाती हैं। बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, क्योंकि सफलता विचारों से शुरू होती है। समय गलतियों से भी बहुत बड़ा शिक्षक। हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। ये विचार हमें सिखाते हैं कि अच्छी सोच और कर्म ही जीवन को सुंदर बनाते हैं।

जो हर परिस्थिति में समझदारी और धैर्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ज्ञान ज्योति। अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए प्रभु मनन करें, प्रभु वंदन करें और दिन की शुरुआत करें। कहते हैं किसी भी कार्य की शुरुआत यदि गणपति वंदन से हो तो निश्चित ही वो कार्य सफल होता है। तो आइए इस सफलता की कामना के साथ आइए करते हैं गणपति वंदन।

ईश्वर शांति की झलक है। जब मनुष्य अपने प्रयत्न में हार जाता है तो ईश्वरीय शक्ति की याद आती है। तो अपने जीवन में ईश्वर का शुक्रिया अदा जरूर करें, जिन्होंने हमें ये खूबसूरत जीवन प्रदान किया है।

ईश्वर की वंदना का उद्देश्य अहंकार से बचना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं,

ही जग जीवन हे जननायक, तव चरण कमल वंदन वंदन, हे परम पिता हे परमेश्वर, शत शत हे अभिनंदन।

जीवन का हर पल आखिरी पल मानकर ईश्वर की वंदना करें तथा अपने बहुमूल्य जीवन के लिए ईश्वर की उपासना करें, उनका शुक्रिया अदा करें।

आप सुन रहे हैं वंदना आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुने श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

पुण्यात्मा काकभुशुंड के आश्रम पहुंचकर ही पक्षीराज गरुड़ का संशय, माया जनित मोह और भ्रम दूर हो गए थे। किंतु उनकी ये जिज्ञासा अवश्य बनी हुई थी कि ऐसा क्यों कर हुआ, ये भी कि काकभुशुंडी ने कौवे का शरीर और श्री रामचरित का अक्षुण भंडार कैसे और कहां पाया। उन्होंने अपनी ये जिज्ञासा काकभुशुंडी के सम्मुख प्रकट की। गरुड़ की ये जिज्ञासा सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और उन्होंने सविस्तार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। फिर ये भी बताया कि कौवे के शरीर वाले जन्म में ही उन्हें श्री राम की अखंड भक्ति के साथ साथ इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। इसी कारण कौवे के शरीर से उन्हें अत्यधिक प्रेम था और वे अपना ये शरीर त्यागने का विचार भी नहीं करते, क्योंकि ये वेद वर्णित सत्य है कि शरीर के अभाव में भगवान का भजन नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं। श्रोताओ, लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से बस थोड़ी ही देर में यानी 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर रोजाना आप सुनते हैं 7:05 पर। 8 सुनेगा समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर

0: रहेगा हिमाचल डायरी का स्वास्थ्य चर्चा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:35 पर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे किडनी स्टोन विषय पर डॉक्टर उमाकांत दत्त से बातचीत। 9:00 से हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। नौ बजकर 20 मिनट पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 10:00 हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता एक ही सितारा, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 10:15 पर। पहाड़ी गीतों से सजा कार्यक्रम लोक रंग लेकर हाजिर होंगे 10:45 पर। और 11:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से हम रिले करेंगे। 11:05 से दोपहर 12:00 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र प्रसारण सेवा। देवधरा के गीत, ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:00। और 12:30 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दिन के 1:00 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के दौरान मिड डे न्यूज 2:00 और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। और 3:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 5:00 हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और 5:05 से आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन संध्या। युवा साथियों के लिए युवमंच कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है रोजाना 5:30 पर। 6:00 प्रादेशिक समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। सफर सुहाने गाने नए पुराने, ये कार्यक्रम सुनिएगा 6:05 पर। और 6:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। सात बजे हिंदी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। और 7:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत रौनकां गराइंदियां, ये कार्यक्रम सुनिएगा 7:25 पर। 8:00 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्र प्रसारण सेवा। समाचार संध्या कांक रहेगा 8:45 पर। और 9:00 न्यूज एट 9 अंग्रेजी समाचार बुलेटिन। रात्रि 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम रंगे गजल। और 10:30 पर रोजाना हमारे केंद्र से आप सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें। देर रात 11:00 हिंदी समाचार बुलेटिन हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो दोस्तों, ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। आपने ट्यून किया FM हमीरपुर 101.8 MHz पर। 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिण च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा

0: भाजपा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कौन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिका समर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरान देशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्ति इति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य सदस्य राष्ट्रान् प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुण जेटलीति क्रिकेट क्रीडांगणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलं 8 पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडांगणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफ़एम् गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि

0: विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM 101.8 MHz पर। 7:05 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को मधु का प्यार भरा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सभी का इस कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत, क्योंकि दस्तक दे चुका है आपका अपना कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। खतरे के निशान से आगे निकल गया, दरिया मेरे गुमान से आगे निकल गया, जुगनू को एक फकीर की ऐसी लगी दुआ, सूरज के खानदान से आगे निकल गया। तनकीद करने वाले बहुत पीछे रह गए, मैं उनके दरमियान से आगे निकल गया, दुनिया लगी हुई है इसी छानबीन में कि मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया, मैं कैसे आसमान से आगे निकल गया। जी हाँ, आगे निकलने के लिए तो चाहिए आत्मविश्वास। जब नाव जल में छोड़ दी

तूफान ही ने मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, क्या मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या, फिर जीत क्या फिर हार क्या।

जी बिल्कुल दोस्तों, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए इसी आत्मविश्वास के साथ, इसी नोट के साथ। आइए सुनते हैं गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर, और अब चलते हैं फ्लैशबैक में और जानते हैं क्या हुआ था आज के दिन। खास बता रहे हैं आपको आज का इतिहास, 9 मई। जी हाँ, भारतीय इतिहास में मुख्य रूप से मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती हम मना रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जी की भी जयंती और रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में जिनको मनाया जाता है। विश्व इतिहास में ये 1945 में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय की याद में विजय दिवस के रूप में भी हम 9 मई को इस दिवस को मनाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से 1540 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। आज ही के दिन गोपाल कृष्ण गोखले जी, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता, इनका जन्म हुआ 1866 में आज ही के दिन। और रविंद्रनाथ टैगोर जी, नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता, जिनकी जयंती है आज 1861 में, इनका जन्म हुआ आज ही के दिन। और 1945 विजय दिवस के रूप में सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी की हार के बाद इस दिन को विजय दिवस के रूप में घोषित किया था आज ही के दिन। और 1946 में प्रथम मातृ दिवस राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा अमेरिका में पहली बार घोषित किया गया था राष्ट्रीय मातृ दिवस आज ही के दिन। और मास्को में द्वितीय विश्व युद्ध की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में भारत के पीएम ने भाग लिया था 2005 में आज ही के दिन। जी हाँ, जैसे विजय दिवस वर्षगांठ के रूप में हम मनाते हैं। तो दोस्तों, ये दिन इतिहास में वीर सपूतों के जन्म और विश्व में शांति की विजय के लिए विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे और साथ ही में यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, जिसके बारे में हम हमारे अगले सेगमेंट में विस्तार से चर्चा करेंगे।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद आप सभी के रेडियो सेट पर। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर। और दोस्तों आज वार्षिक जागरूकता अभियान जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के महत्व को उजागर करता है, हम मना रहे हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे। जहां 2026 में ये वसंत ऋतु में 9 मई और शरद ऋतु में 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की प्रमुख जो बातें हैं वो ये हैं कि मई का जो दूसरा शनिवार और अक्टूबर का दूसरा शनिवार हम मनाते हैं प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के

संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि 2026 की जो थीम है वो है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना, मेकिंग सिटीज एंड कम्युनिटीज बर्ड फ्रेंडली। हर पक्षी मायने रखता है दोस्तों, और इसके लिए अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इनकी घटती संख्या पर्यावरण के लिए खतरा है। ये दिन प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे कि आवास का नुकसान, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को शिक्षित करता है। इस वर्ष का जो अभियान है हर पक्षी मायने रखता है, इस बात पर जोर देता है कि प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए सामुदायिक विज्ञान महत्वपूर्ण है। और वाकई पक्षी जो है वो खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से टावर्स लग रहे हैं इसकी जो वाइब्रेशंस हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं। और अगर ये इनके लिए खतरनाक हैं तो हमारे लिए भी हैं, क्योंकि ये हमें सचेत कर रहा है पर्यावरण की ओर, जिसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और दोस्तों आज हम मना रहे हैं यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक अभियान है ये। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आठवां यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक हम मना रहे हैं 12 मई से 18 मई 2025 तक, जिसका थीम है पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाएं। तो जितना ज्यादा हो सके पैदल चलिए। अगर आपको लगता है कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दरमियान का सफर है तो कोशिश कीजिए कि आप पैदल चलें और या फिर साइकिल चलाएं, ताकि हमारी जो कसरत है, बॉडी मूवमेंट है, व्यायाम भी हो सके और ये वाकई बहुत फायदेमंद है। और साथ में दोस्तों रोड सेफ्टी का ख्याल रखिए, हमेशा अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रख के रोड पर चलिए। तो इसी के साथ अब यहां पर ले रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर। बने रहिए FM हमीरपुर के साथ, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है बिल्कुल आपका अपना रेडियो स्टेशन और हम हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: तो एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर। दोस्तों अब चलते हैं विज्ञान जगत की ओर। जी, हमारा अगला सेगमेंट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन वेपन का पहला सफल परीक्षण किया है। ये देश का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो साधारण बम्स को सटीक मार करने वाले निर्देशित बम्स में बदल सकता है। तारा को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत और अन्य DRDO प्रयोगशालाओं में विकसित किया गया है। इससे कम लागत वाले हथियार की मारक क्षमता और सटीकता को बढ़ाकर जमीनी लक्ष्यों को निष्क्रिय किया जा सकेगा और यह परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं को स्वदेशी तकनीक से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तारा अपने आप में कोई नया बम नहीं है बल्कि एक स्मार्ट किट है। ये अत्यधिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला

ग्लाइड हथियार है दोस्तों। आमतौर पर वायुसेना के पास निर्देशित हथियारों के अलावा बड़ी संख्या में सामान्य बम होते हैं, जिन्हें विमान से गिराने पर वे गुरुत्वाकर्षण के भरोसे नीचे गिरते हैं। इसमें हवा के दबाव या विमान की गति के कारण चूक होने की संभावना बनी रहती है। तो तारा को पुराने या साधारण बम पर फिट कर दिया जाता है। इससे बम में छोटे पंख और एक नेविगेशन सिस्टम जुड़ जाता है। सीधा गिरने के बजाय हवा में तैरते हुए काफी दूर तक जा सकता है और इसमें लगे सेंसर और गाइडेंस सिस्टम बम को ठीक उसी जगह ले जाते हैं जिसका कोऑर्डिनेटेड फीड किया हो। इससे लड़ाकू विमान सुरक्षित दूरी से भी बम गिरा सकते हैं और बम खुद अपना रास्ता ढूंढते हुए लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। कम लागत वाली अत्याधुनिक प्रणाली का उपयोग किया गया है और युद्ध की स्थिति में कम लागत में जमीनी लक्ष्यों पर सटीक प्रहार संभव हो पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर डीआरडीओ और वायुसेना को बधाई देते हुए इसे सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। और डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने भी टीम के प्रयासों की सराहना की है।

और दोस्तों, हिमाचल की वादियों में गूंजने वाली पक्षियों की चहचहाहट अब वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरण संरक्षण का बड़ा आधार बनने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में 9 मई को यानी कि आज से हिमालयन बर्ड काउंट आयोजित किया जाएगा। इस अनूठे नागरिक सहभागिता आधारित अभियान में पक्षी प्रेमी, विद्यार्थी, फोटोग्राफर, वन अधिकारी, शोधकर्ता और आम लोग मिलकर हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षियों की गणना और रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रदेश भर में स्थानीय बर्डिंग समूहों और जिला समन्वयकों की ओर से बर्ड वॉक, जागरूकता अभियान और प्रकृति संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमालयन बर्ड काउंट हर वर्ष मई महीने के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में बर्ड कंजर्वेशन नेपाल और रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड भूटान की पहल पर। और विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है। दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं और बर्फीली चोटियों, देवदार और चीड़ के जंगलों, नदी घाटियों और ऊंचे घास के मैदानों में कई दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियों का बसेरा होता है। हालांकि जलवायु परिवर्तन, जंगलों का क्षरण और बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में पक्षियों की नियमित निगरानी पर्यावरणीय बदलावों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सभी के रेडियो सेट्स पर बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ, आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये बिल्कुल आपका अपना रेडियो स्टेशन और हम हैं देवभूमि की सुरीली धड़कन।

और अब म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दोस्तों का स्वागत है. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर. दोस्तों, महाराणा प्रताप 2026 को हम इनकी जयंती मनाते हैं. मेवाड़ के महान राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया. नौ मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप अपनी वीरता, स्वाभिमान और मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रसिद्ध हैं. ये दिन विशेष रूप से राजस्थान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. और कई बार इसे हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को भी मनाया जाता है. 2026 में 17 जून को भी चिन्हित की जा सकती है, लेकिन मुख्य उत्सव हम मनाते हैं 9 मई को. महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. 1576 में उनके द्वारा लड़े हुए हल्दीघाटी युद्ध को उनके अद्वितीय साहस और देश प्रेम के लिए याद किया जाता है.

दोस्तों, प्रदेश में कूड़े कचरे की उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी अब संबंधित डीसी की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीसी को कूड़ा कचरा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की पावर दी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जिले में डीसी की निगरानी में एक स्पेशल सेल गठित होगा, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे। और ये सेल न केवल नियमों के पालन की निगरानी करेगा, बल्कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगा, जिसकी पुष्टि मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने दी है। बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थान, होटल, उद्योग व अन्य इकाइयां यदि नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके पानी और बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे।

अब लोग डिजिटल गेट पास बनाकर सीएम व सचिवालय में अधिकारियों से मिल सकेंगे। बैठकों, जनसंपर्क व्यवस्था को अधिक सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए उद्देश्य से यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा के शुरू होने से अब लोग ऑनलाइन डिजिटल गेट पास बनाकर आसानी से सचिवालय में अधिकारियों से मिल सकेंगे। ये प्रणाली मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी तथा राज्य भर के अधिकारियों और आधिकारिक कार्यक्रमों और बैठकों के समन्वय को अधिक प्रभावी बनाएगी।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी के लिए ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्रों पर ले जाने योग्य सामान पर एडवाइजरी जारी कर दी है। परीक्षा 11 से 31 मई तक देश विदेश के 15 शहरों में होगी। पारदर्शी पानी की बोतल ले जा सकेंगे। धार्मिक आस्था से जुड़े प्रतीक और धागे जैसे कलवा मौली पहनने की अनुमति होगी, लेकिन समय से पहले पहुंचकर जांच करवानी होगी और सामान्य जूते चप्पल लो हील फुटवेयर पहन सकेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का पूरा खाका तैयार हो गया है। एयरलाइन इंडिगो ने 15 जून 2026 अपनी उड़ानों का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें धर्मशाला के साथ साथ देश के कई अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ा गया है।

देश में माल की आवाजाही के डिजिटल प्रमाण यानी ई वे बिल जनरेशन अप्रैल 12% बढ़कर 13.33 करोड़ पर पहुंच गया है। ये जीएसटी लागू होने के बाद चौथा सबसे ऊंचा स्तर है, जो मजबूत घरेलू खपत और आर्थिक सक्रियता दर्शाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये वृद्धि दर्शाती है कि देश में सप्लाई चेन की गतिविधियां और खपत की मांग मजबूत बनी है। बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट की सुस्त रफ्तार और नए उत्सर्जन मानकों के कारण मशीनों की कीमतें जो हैं वो निर्माण उपकरणों की घरेलू बिक्री 2026 में 6.7% से घटकर 113,229 यूनिट रह गई है। हालांकि बेहतर मानकों के चलते भारतीय मशीनों की यूरोप जैसे विकसित बाजारों में मांग बढ़ी है, जिससे निर्यात 32.5% उछल गया है और अगले साल बिक्री में 7% सुधार की उम्मीद है।

हैदराबाद की स्काईरूट एरोप्रेस ने 566 करोड़ जुटाकर 10,338 करोड़ का वैल्यूएशन हासिल कर लिया है। और जनवरी मार्च तिमाही में देश के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज डीए का मुनाफा जो है वो 61 से बढ़कर 797.3 करोड़ रुपए हो गया है। और मुनाफा बढ़ने की मुख्य वजह है ट्रांजैक्शन चार्ज से आय बढ़ना।

अब ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने ये नई पहल शुरू की है। इसके तहत जिले में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा, जिससे समूहों की पूरी जानकारी ऑनलाइन दिखेगी और सभी गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। योजना के तहत महिलाओं द्वारा तैयार किए वाले जो उत्पादन है उनको ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने की भी तैयारी की गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की ओर और फिर लौट कर आते हैं। आप सभी के रेडियो सेट्स पर बने रहिए एफएम हमीरपुर के साथ आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह बिल्कुल आपका अपना रेडियो स्टेशन और हम हैं देवभूमि की सुरीली धड़कनें।

जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुकेश की खूबसूरत सी आवाज के बाद। अब रुख करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। जी हाँ, खेल खबरों की ओर। भारत ने पहली बार AFC अंडर 17 महिला एशिया कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। भारत टीम ने पहले करो या मरो जैसे मैच में लेबनान को 4-0 से रौंदा और फिर ताइवान फिलिपिन मैच पर निर्भर, जिसमें दोनों टीम को न्यूनतम 12 गोल से जीतना था। इसमें दोनों टीम्स विफल रहीं और भारत अंतिम 8 में पहुंच गया। लेबनान के खिलाफ जीत में प्रतिका बर्मन ने 2 गोल किए, जबकि अलवा देवी सेंजॉम और जोया ने एक एक गोल दागा। 2005 के बाद टूर्नामेंट में यह भारत की पहली जीत थी। क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला 11 मई को चीन से होगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी प्रो लीग में अपना 100वां गोल किया है, जिसमें अल नासर ने अल शबाब को 4-2 से हराकर तालिका में शीर्ष पर 5 अंकों की बढ़त बना ली है। 41 वर्षीय फॉरवर्ड रोनाल्डो ने मैच खत्म होने से 15 मिनट पहले सदियों माने के क्रॉस पर गोल किया, जो उनके करियर का 971वां गोल है और यह सत्र में उनका लीग में 26वां गोल भी था। चेल्सी के पूर्व खिलाड़ी जुआयो फेलिक्स ने भी अल नासर के लिए 3 गोल किए हैं। फीफा विश्व कप 2026 आज तक का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन बनने जा रहा है। इस बार टीम्स की वित्तीय सहायता और पुरस्कार राशि में बड़ा इजाफा करते हुए कुल वितरण राशि $871 मिलियन तक पहुंचा दी गई है और अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी में 11 जून से शुरू होने वाला टूर्नामेंट अब तक का सबसे अधिक कमाई वाला विश्व कप बनने जा रहा है। हालांकि बढ़ती पुरस्कार राशि के साथ फीफा को टिकट्स की आसमान छूती कीमतों को लेकर आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। फीफा के अनुसार 2026 का वर्ल्ड कप पहली बार 48 टीम्स के साथ आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2022 तक टूर्नामेंट में 32 टीमें हिस्सा लेती थी। मैचों की संख्या बढ़ाकर 104 हो जाएगी। फीफा ने कहा है कि भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों और टीम टिकटिंग आवंटन के खर्च के लिए $16 मिलियन से अधिक जो है वो रखा गया है। तो इस बार का 48वां टीमों की मौजूदगी वाला टूर्नामेंट बनेगा अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल आयोजन। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने सुपर रैपिड और बिल्स टूर्नामेंट के रैपिड वर्क के 9वें और अंतिम दौर में अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियागो कुरुआना को हराकर संयुक्त तो 4th स्थान हासिल कर लिया है। अब ब्लिंस में 18 दौर की बाजियां खेली जानी बाकी हैं। अमेरिकी खिलाड़ी हैंस मौके निमन ने 13 अंकों के साथ रैपिड वर्क का विजेता बनकर इतिहास रचा है और गुकेश ने कहा कि रैपिड वर्क में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव वाला रहा और गुकेश कुरुआना और क्रोशियाजो 9-9 अंकों के साथ 4th स्थान पर रहे हैं। जॉन मैकेगन के 2 गोल की मदद से एस्टन विला ने नॉटिंगम फॉरेस्ट को सेमीफाइनल के दूसरे चरण में 4-0 से हराकर यूरोप लीग फुटबॉल के फाइनल में प्रवेश किया। 44 वर्षों में पहला अवसर है जब एस्टन विला ने यूरोप के किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है और एस्टन विला 20 मई को इस्तांबुल में होने वाले फाइनल में जर्मन क्लब फ्रीबर्ग से भिड़ेंगे। और एस्टन विला 1982 में यूरोप कप में बायर्न म्यूनिख पर जीत हासिल करने के बाद से पहली बार यूरोप के किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलेंगे।

बीसीसीआई ने हनी ट्रैप कानूनी दायित्व और सुरक्षा जोखिमों के प्रति चेताते हुए कहा कि आईपीएल में खिलाड़ियों, सहयोगियों, स्टाफ और टीम अधिकारियों के होटल के कमरों में अधिकृत लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध जो है वो लगने वाला है। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल और शिफाली वर्मा को डोप टेस्ट के लिए सैंपल नहीं देने पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली की बल्लेबाजी एक बार फिर कोलकाता के सामने 143 रन का लक्ष्य।

पंजाब किंग्स के स्टार स्पिनर यजवेंद्र चहल के फ्लाइट में टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की यूट्यूब ब्लॉगिंग पर शिकंजा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने अर्शदीप को आईपीएल के दौरान ब्लॉग पोस्ट करने से रोक दिया है।

0: और दोस्तों जिला सिरमौर शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित हिमाचल प्रदेश टेस्ट शतरंज चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ द स्कॉलर्स होम स्कूल के प्रांगण में हुआ है। और 10 मई तक होने वाली स्पर्धा में अंडर 7, अंडर 9 और अंडर 11 वर्ग में करीब 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। तो इसी के साथ अब हमारे आज के इस कार्यक्रम का समय हो रहा है पूरा। अपनी दीदी दोस्त मधु को आज का ये कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर यही समाप्त करने की इजाजत दीजिए। एक बार फिर आपसे कहेंगे सुप्रभात हमीरपुर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। आपने चुनिए एफएम हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता सुरेंद्र अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश

0: की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
1: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप

0: 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
4: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट

0: ने अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है, गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Reaching the semi-finals of this tournament would guarantee India a spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Today, Rajasthan Royals will face Gujarat Titans at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. The match will begin at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Shagun. All the newspapers cover the nation's political fervor. Dada to replace Didi in West Bengal. Vijay meets governor again. Left on hold is the headline in Hindustan Times. While the Times of India writes, Bengal's Adhikari Suvendu to be state's first BJP CM. Uncertainty continues in Tamil Nadu government formation, cites the Hindu. The Indian Express quotes Rajnath Singh describing Operation Sindoor as short duration, deep penetration and high impact operation. Under the headline, Operation Sindoor showcased our capabilities, ethos. China admits backing Pakistan during conflict with India, writes the Pioneer. SC raps Punjab police for letting off drug sharks, cites the Tribune. US awaits Iran response to peace proposal as Gulf fighting flares up, reports the Indian Express. The Asian Age in an exclusive title for both US and Iran, peace the only choice, writes that the reality of the war is that the two major combatants need peace, and it is up to the US to rein in Israel and its action in Lebanon. The only hope is negotiations will begin in earnest during another 30-day ceasefire, as envisaged in the latest peace plan. And finally, Google explores major AI infra investments in India, notes Financial Express. Elaborating, tech giant Google is exploring investment opportunities in India across AI as well as of service and drones. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to take oath as first BJP Chief Minister of West Bengal this morning. Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to attend the swearing-in ceremony. Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Rajasubramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarterfinals for the first time. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आप निचुन के एफएम हमीरपुर आपके अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज पर 8:30 हुए हैं. लीजिए प्रस्तुत है हिमाचल डायरी का आज का अंक. हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है. आज के इस अंक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए निर्धारित शिक्षा पात्रता में बदलाव किया है. कॉमर्स शिक्षक बोर्ड, संगीत शिक्षक, संस्कृत अध्यापक, इतिहास अध्यापक पोस्ट कोड, हिंदी अध्यापक, राजनीतिक शास्त्र पोस्ट कोड, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, इन सभी के पद के लिए अब अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने स्नातक और बीएड किसी भी विषय में की हो. अनिवार्यता यह रहेगी कि स्नातकोत्तर संबंधित विषय में ही न्यूनतम 55% अंकों के साथ और टैट पास होना चाहिए. पहले बीएड और स्नातक भी संबंधित विषय की होने की पात्रता निर्धारित की थी, लेकिन अब बीएड व स्नातक किसी भी विषय का हो सकता है. प्रदेश शिक्षा विभाग के निदेशक से स्पष्ट किया है कि स्नातक शिक्षा बीएड की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में प्राप्त करने वाले और शिक्षक योग्यता परीक्षा पास उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे. स्नातकोत्तर में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है. उम्मीदवारों के लिए आयोग ने 11 मई को सुबह 10 बजे से 16 मई को रात 12 बजे तक 6 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए दोबारा आवेदन मांगे हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. संगीत शिक्षक, संस्कृत, इतिहास, हिंदी अध्यापक के पद के लिए आयोग ने पात्र उम्मीदवारों से 15 मई तक आवेदन मांगे हैं. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि विभिन्न अध्यापक पदों के लिए निर्धारित शिक्षा पात्रता में परिवर्तन किया गया है और आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचना डाल दी गई है. एचपीयू में पहली बार एआई और डेटा साइंस जैसे आधुनिक विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं. विश्वविद्यालय के डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

भाग में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए डेटा साइंस और एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 मई निर्धारित की गई है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा IIT, NIT, JNU और DTU के विशेषज्ञों के शैक्षणिक सुझावों के आधार पर विकसित की गई है। छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश क्याकिंग एवं केनोइंग एसोसिएशन की ओर से जूनियर एवं सब जूनियर लड़के और लड़कियों के वर्ग के खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय ट्रायल का आयोजन 10 मई को होगा। ये ट्रायल कसोल कोल डैम स्थित साई वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बिलासपुर में किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय ट्रायल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की क्याकिंग एवं केनोइंग टीम का चयन किया जाएगा, जो भारतीय क्याकिंग एवं केनोइंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर कैनो स्प्रिंट प्रतियोगिता है। और ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता 12 से 14 जून तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंध लेक में आयोजित की जाएगी। सभी प्रतिभागियों को 10 मई को दोपहर 12 बजे तक सेंटर कसोल में पहुंचना अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को तेज कर दिया है। विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा शाखा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 23 मई को आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय से समृद्ध सभी सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजेस में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में पिछले दिनों हुए बेमौसमी बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि ने किसान और बागवानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश में आज यानी शनिवार और रविवार को मौसम साफ रहेगा। 11 मई से फिर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 14 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में धर्मशाला में IPL के पहले 2 मैचों पर बारिश का खतरा बना हुआ है। धर्मशाला में 11 और 14 मई को मैच होने हैं। शुक्रवार को राजधानी शिमला सहित कई जिलों में बादल छाए रहे और मैदानी जिलों में धूप खिली रही। और मौसम में आए बदलाव से हिमाचल में अधिकतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम चल रहा है। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 MHz पर। 8:35 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां लेकर इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी हाँ श्रोताओं, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का ध्येय ही यही है कि हमारे आम जनमानस तक जागरूकता पहुंचे और वो बीमारियों से बचे रहें। तो बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमाकांत दत्त। ये यूरोलॉजिस्ट हैं और एम्स बिलासपुर में कार्यरत हैं और आज ये हमें गुर्दे की पथरी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद मैम। मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि मैं आपके इस स्टूडियो में आज उपस्थित हूँ और आज हम जो है किडनी स्टोन के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे जनरल पब्लिक के लिए कि किन वजहों से किडनी स्टोन होते हैं, कैसे हम उनको रोक सकते हैं, क्या रूल्स हैं कि ये चीज़ करें और उनसे नहीं हुएं।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गुर्दे की पथरी जो है ना, ये एक ऐसी समस्या है कि सामने तो ये दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत सारे लक्षणों के साथ हर व्यक्ति में ये लक्षण भी वेरी करते हैं और बहुत सारी कन्फ्यूज़न के साथ आती है कि पता नहीं कहाँ दर्द पेट में जिस भी साइड होती है, तो उसके बहुत सारे हम अपने मन में ही ऐसे कयास लगाते हैं कि गैस्ट्रिक हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स ही इस चीज़ का डायग्नोसिस करते हैं, वो ही बताते हैं कि ये क्या समस्या है। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि गुर्दे की पथरी है क्या और ये क्यों बनती है।
1: सो गुर्दे की पथरी, जैसे मैं आपको पहले सबसे है कि हमारे जो किडनीज होती हैं, जो गुर्दे होते हैं, वो एक फिल्ट्रेशन जो है का काम करते हैं, मतलब जो बॉडी में मेन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे यूरिन के माध्यम से निकालते हैं
0: जी।
1: अब आ जाते हैं कि गुर्दे की पथरियां बनती क्यों हैं। उससे पहले जो है ना, थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक जनरल उस पर पब्लिक व्यू में कि जैसे घरों में पानी की पाइपें होती हैं, यदि उनमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है तो पानी ब्लॉक हो जाता है, तो वैसे ही जो किडनी का काम मेन है कि फिल्ट्रेशन करना। तो यदि हमारे बॉडी में मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, यदि हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो यूरिन ऑलरेडी कंसंट्रेटेड होगा, तो उस जो सॉल्ट हैं और मिनरल हैं उनको एक मौका मिल जाता है और वो पथरी बनाने लग जाते हैं। तो यदि हम सपोज अच्छा पानी की क्वांटिटी रखते हैं तो फिल्ट्रेशन इस हिसाब से होती है कि वो डिपॉजिट नहीं होते हैं मिनरल और जितने भी सॉल्ट हैं जो बॉडी में, जो किडनी से होके जो है ना कुछ चीज़ें तो कंसंट्रेट होती हैं और वापस बॉडी में चली जाती हैं, कुछ जो है जो वेस्ट लगता है बॉडी को और किडनी को ये लगता है कि नहीं ये हमें नहीं अब चाहिए, हमें इसको जो है यूरिन के रास्ते जो है बाहर निकालना है। बट वहीं पर एक कैच है कि यदि आपका पानी की मात्रा पर्याप्त है तो वो डिपोजिशन नहीं होगी, तो पथरियां नहीं बनेंगी। अब इसमें भी पथरियां डिफरेंट डिफरेंट जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पथरियां हो सकती हैं, क्या उनके सिम्टम है। सिम्टम पे आए तो जैसे आपने पूछा कि पेट की दर्द है, गैस्ट्रिक है, बहुत पेशेंट आते हैं कि, तो जब भी हम बात करते हैं किडनी की पथरी की दर्द की तो नॉर्मली जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी के साइड जो पसलियां होती हैं जिसको हम रिब्स केस बोलते हैं, तो यदि हम पीछे की तरफ देखें तो एक तरफ रीढ़ की हड्डी है सेंटर में और उसके पीछे की तरफ जो पसलियां हैं उसके जो नीचे वाली जो एरिया है वहाँ किडनियां होती हैं, तो वहाँ पे जो पेन होती है, जो दर्द होती है, वो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि किडनी के स्टोन की वजह से हो सकती है। लेकिन किडनी के स्टोन कुछ ऐसे हैं जो नीचे जो मूत्र नलियाँ हैं जो किडनी से लेके पेशाब को नीचे पेशाब की थैली तक लेके जाती हैं, जिनको हम इंग्लिश में जो है यूरेटर बोलते हैं, तो वहाँ पे यदि स्टोन बनते हैं और वो रुकावट करते हैं तो वो पथरियों की दर्द जो है आगे की तरफ आती है, नीचे कुल्लों की तरफ आ जाएंगी, नीचे जो है ना पेट की तरफ आएंगी। उसके अलावा क्या है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियां आ सकती हैं,

0: ठीक है, पेशाब में खून आ सकता है, तो पेशाब में खून हम कभी भी जो है ना उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए,
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक है। आपको डॉक्टर का परामर्श लीजिए कि हाँ पेशाब का, क्योंकि पथरी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और कुछ आजकल तो कैंसरस भी ऐसी हैं जहाँ पे पेशाब में खून आ सकता है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं। तो इसलिए हमेशा ये मत सोचिए कि पीठ की दर्द है तो ये जो है या तो जो है कोई रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है या कोई मसल स्ट्रेन हुई है उसकी वजह से।
1: बिल्कुल,
0: और हमारे यहाँ पब्लिक में क्या है कि नॉर्मली जो है लोग इतने व्यस्त हैं, दर्द हुई आपने जो है ना घर पे कहीं नज़दीक कहीं केमिस्ट
1: बिल्कुल,
0: से जो
1: बहुत
0: है
1: सारे
0: हाँ
1: नाम याद
0: हाँ
1: होते
0: हाँ
1: हैं लोगों
0: कि
1: को।
0: पेन किलर खा लिया और
1: जी
0: उसके बाद जो है भूल गए क्योंकि पेन किलर खाया, वो आप इमिडिएटली तो दर्द कम हो जाएगा, लेकिन वो एक जो है एक आपको अलार्मिंग फीचर है। आज ईजिली आपको अवेलेबल है अल्ट्राहाउंड हो गया, सीटी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, तो अल्ट्राहाउंड तो मिनिमम बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हर जगह आजकल उपलब्ध है,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: एटलीस्ट वहाँ हम चीज़ों को पिक कर सकते हैं अर्ली। तो मतलब कभी भी कोई भी पेन है उसको आप जो है नज़रअंदाज ना करिए,
1: जी
0: ठीक है, एटलीस्ट आप अल्ट्राहाउंड जरूर करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक पेन किलर लिया और उसके बाद बात इतनी आगे पहुंच जाए कि यूरिन में इन्फेक्शन हो रहे हैं, किडनियां जो है ना स्टोन की वजह से खराब। आज की चर्चा में हमारा मेन यही है कि आजकल जैसे गर्मियों का मौसम है मई और जो जून महीना, जिसमें जो पर्याप्त रूप में जो काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, पसीना बहुत निकलता है, तो हम पानी की मात्रा कम कर देते हैं,
1: जी
0: तो हमें प्रिवेंशन करना है। मतलब किडनी स्टोन तो देखो बनते रहेंगे, लेकिन हमें इस हिसाब से प्रिवेंशन करना है कि आप उनसे कॉम्प्लिकेशन ना होए, मतलब ऑपरेशन तक की नौबत ना आए।
1: जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर जागरूकता होगी तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी कई बार इग्नोरेंस होती है, या कई बार हम थोड़ा सा आलसीपन वाली बात कह लें कि भाई चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब दर्द होगी तो देखेंगे। और बहुत सारी स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो दर्द प्रेजेंट नहीं करते हैं, उसमें दर्द होती ही नहीं है, और कभी कोई और समस्या के साथ जब हॉस्पिटल जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि पथरी भी है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जहाँ उस पानी की वजह से ही पथरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे?
0: तो जहाँ जब पानी की बात हम करते हैं तो ये है कि पानी को फिल्टर करके, यदि फिल्टर नहीं कर सकते तो बॉयल करके,
1: जी
0: क्योंकि नॉर्मली हम जब भी हैं भाभड़ियों से पानी ले रहे हैं, कुओं का पानी है, पुराने टाइम अभी भी ऐसे हैं जो नेचुरल स्प्रिंग है कि नेचुरल नाले थे जो जहाँ पे पानी, तो वो अच्छी क्वालिटी का है, हम ये
1: जी
0: नहीं मान रहे, लेकिन उसमें कैल्शियम की मात्रा यदि ज़्यादा है, मिनरल्स ज़्यादा हैं, और
1: जी
0: उसके बाद भी आप पानी कितना पी रहे हैं, ठीक
1: जी
0: है, वो भी मैटर करता है। तो इसलिए हम इसके लिए बोलते हैं कि पानी की मात्रा आप इतना रखिए, एटलीस्ट 3 लीटर गर्मियों में रखिए। यदि आप जैसे सपोज इसमें भी कुछ रिस्क फैक्टर हैं,
1: जी
0: जैसे जो बाहर फार्मर हमारे किसान भाई बहन हैं, ठीक है, आजकल जो है ना फसलों का काम चला हुआ है, ठीक है,
1: जी
0: खेती का काम चल रहा है, तो आपके हाथ में हमेशा पानी की बॉटल होनी चाहिए, और
1: जी
0: यदि आप पानी बॉयल करके पी सकते हैं तो उससे अच्छा और कोई माध्यम नहीं है।
1: जी हाँ बिल्कुल। और ये हमारे हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो पानी काफ़ी सारा है और बहुत अच्छा क्वालिटी का माना जाता है, फिर भी जैसे आपने कहा कि हमें पता होना चाहिए, या फिर ये है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि फिल्टर वाटर यूज़ करें या फिर उबाल कर। तो जैसे इंडस्ट्रीज़ की बात हम करते हैं, पंजाब की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर पानी की थोड़ी समस्या होती है, और
0: सबसे
1: वहाँ पर ये इंसिडेंसेस ज़्यादा आते हैं कि पथरी हो गई, गुर्दे की है या पित्ते की है। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पानी उबाल कर पिया जाए, तो हम देखते हैं अक्सर हम भी घर में पानी उबालते हैं, जब हम उसको काफी बॉइलिंग पॉइंट पर ले जाते हैं तो उसके बाद जब उसको ठंडा करते हैं तो नीचे एक परत सी बैठ जाती है, सफेद सी, वो क्या होती है? वो तो नुकसानदायक नहीं होती?
0: जो नीचे परत बैठ जाती है वो नीचे वाला तो जो है ना वो उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो नीचे है वो सारे कैल्शियम और जितने भी सॉल्ट हैं या मिनरल वो डिपॉजिट हो चुके हैं।
1: जी
0: आप ऊपर का पानी आप पी लीजिए, उसको आप फ्रिज में बाद में यदि ठंडा करना है या घड़े में रख लीजिए। देखो पुराने टाइम में आप गर्मियों में देखते हैं हर जगह पीयू लगे होते थे, लोगों ने जो है सुबह सुबह एक घड़ा पानी का रख दिए थे
1: जी
0: कि जो है
1: बिल्कुल,
0: मुसाफिर जा रहा है तो उसको जो है पी ले पानी, ठीक है।
1: जी
0: बट मेरा यही है कि आप पानी बॉयल करिए, लेकिन हमेशा पानी की बॉटल रखिए साथ में।
1: जी
0: आजकल गर्मियों में चाहे आप
1: बिल्कुल,
0: सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए पानी की। आप ये ना सोचिए कि नहीं अब मैंने पानी नहीं पीना है या मैंने प्यास, और दूसरा इंतजार नहीं करना है प्यास लगने का। यदि आपने किडनी स्टोन रोकना है तो एक
1: जी
0: गोल्डन रूल है हमारे कि जिसमें आपने इंतजार नहीं करना है कि मुझे प्यास लगेगी तभी मुझे पानी पीना है,
1: जी
0: मतलब पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है।

0: दूसरा गोल्डन रूल है कि यूरिन का कलर हमेशा जो है थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, मतलब पीला नहीं। यदि आप पीला है यूरिन का कलर तो हम ये मानेंगे कि कंसंट्रेटेड है, यूरिन आ रहा है, डिहाइड्रेटेड है पर्सन।
1: हल्का पीला रंग तो वैसे होता है,
0: हल्का पीला, लेकिन यदि आप उसको पानी की मात्रा रखेंगे तो मतलब एक तरह से बिल्कुल व्हाइट रहेगा।

0: होते हैं या खान पान खराब खान
1: हाँ,
0: पान?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ठीक है, कि पानी के अलावा क्या चीज़ें हैं।
0: जी
1: पानी के अलावा दूसरा है कि सॉल्ट इनटेक, जो लोग ज़्यादा ज़्यादा नमक लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम किडनी से ज़्यादा फिल्टर होता है,
0: जी
1: और कैल्शियम स्टोन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोन जो है कैल्शियम स्टोन है। उसके अलावा क्या है, डाइटरी डिस्टर्बेंसेस, आप
0: जी
1: कुछ चीज़ ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, जैसे सपोज कोई रेड मीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हमारे यहाँ पे जो है ना इसका भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, यदि आप मंडी वाली बेल्ट देख लें जहाँ पे जो है ना नॉन वेज डाइट ज़्यादा है, तो रेड मीट पर्टिकुलरली जिससे जो भेड़ बकरियों वाला जो ये वाला मीट है उसमें स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं।
0: ज्यादा होते हैं।
1: इन्फेक्शन यदि होते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, ये फीमेल में कॉमन, महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उनमें जो इन्फेक्शियस स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
0: जी
1: यूरिक एसिड स्टोन, अब यूरिक एसिड स्टोन जो है थोड़े से कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यदि कोई ओवेज है, मीन मोटापा है, या डायबिटीज़ है, या फिर जो है उसके अलावा जो है उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो
0: जी
1: इनमें जो है यूरिक एसिड के स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा है।
0: जी जी और लक्षण तो आपने बहुत अच्छे से बताए कि कहाँ से किस किस रीजन तक दर्द होती है, इसके अलावा उल्टियाँ वगैरह भी आने आ जाती हैं या कई बार आने का मन करता है, मितली होती है। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि अक्सर जब भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, आम जनमानस की ये धारणा रहती है कि अगर कैल्शियम इनटेक ज़्यादा हो रहा है तो ही पथरी बनती है, क्या यही एक तरह की पथरी होती है कि बहुत सारी अन्य तरह की होती है?
1: बहुत अन्य तरह की ये हैं पथरियाँ, कैल्शियम सबसे ज़्यादा कॉमन है,
0: जी
1: यूरिक एसिड है, कुछ सिस्टाइन स्टोन है जो हेरिडिटरी स्टोन है, लेकिन यहाँ पे मिथ ये है कि जैसे कैल्शियम, कुछ मिथ भी हैं जो जनरल पब्लिक में काफ़ी ज़्यादा हैं कि नहीं ये चीज़ करेंगे हम, दूध नहीं पियेंगे, दूध में जो है ना कैल्शियम होता है
0: जी
1: तो उससे
0: हाँ
1: स्टोन बन जाते हैं, तो यहाँ पे ये मिथ भी बहुत ज़रूरी है जो हमें एड्रेस करना है कि
0: जी
1: दूध पीना चाहिए, दूध में
0: जी
1: कैल्शियम है, विटामिन डी है, जो हमारी किडनी की हेल्थ के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोन की हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ,
0: जी
1: किसी को दूध से एलर्जी है, जैसे किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एक लैक्टोज इनटॉलरेंस जिनको बोलते हैं, वो डॉक्टरी परामर्श से जो है ना कर सकते हैं चाहे,
0: जी
1: अदरवाइज जो है ये चीज़ ऐसा नहीं है कि दूध आपको पीना है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और विटामिन डी है जो हमारी बोन हेल्थ के लिए जरूरी है और किडनी हेल्थ। दूसरा एक और मिथ है पब्लिक में कि जैसे मैंने बोला कि बियर कंजप्शन बहुत
0: जी
1: ज़्यादा, आज भी आपके हमारे क्लिनिक में आते हैं पेशेंट, सर मैं बियर पी लूँ मेरे को किडनी स्टोन जो है निकल जाएगा,
0: जी
1: बियर पीने से किडनी स्टोन बनते हैं,
0: जी
1: ठीक
0: हाँ
1: है, क्योंकि जब बियर पियेंगे कुछ उसमें सॉल्ट ऐसे हैं जैसे कैडियम बेस होते हैं जो स्टोन को प्रेसिपिटेट करते हैं, दूसरा जब बियर आदमी पीता है तो एक तरह से डिहाइड्रेटेड होता है, उसमें
0: जी
1: डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि वो उसको थोड़ा भी जो है ना वो उसके तो पानी की मात्रा नहीं पिएगा, तो ये जो है पब्लिक में जो मिथ है जो दूर होने चाहिए, क्योंकि आज हमारा मेन यही है कि प्रिवेंशन कैसे करनी है।
0: जी जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए बहुत सारे मिथ तो अक्सर हर वर्ग में या हर कम्युनिटी में पाए जाते हैं, और अपनी अपनी तरफ से ही लोग ये सोच लेते हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन जो आपके माध्यम से, क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो चीज़ आप बताते हैं ना वही हमें फॉलो करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी को दर्द हो रही है पेट में और वो उस दर्द के साथ आपके पास आता है, तो किस तरह से फिर डायग्नोसिस का प्रोसेस क्या रहता है?
1: डायग्नोसिस से पहले हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं उनको कि कहाँ कहाँ का दर्द है, कि पॉसिबिलिटी सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं,
0: जी
1: उनसे
0: हाँ
1: पूछना पड़ता है कि आपको पहले कभी स्टोन तो नहीं रहे हैं, सपोज उस रीजन में मतलब उनको स्टोन रहे हैं तो हमारे को पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं दोबारा।
0: जी
1: उसके अलावा हम उनको यूरिन एग्जामिन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर हमें पता लग जाता है।
0: जी जी बिल्कुल। और जब किसी को ये डायग्नोसिस हो जाता है, क्योंकि अक्सर ये भी धारणा है कि किडनी का स्टोन जो है ना वो आसानी से निकल जाता है पेशाब के रास्ते में से, तो अगर मान लीजिए किसी को ये डायग्नोसिस हो भी जाता है तब भी लोग बहुत लाइटली लेते हैं, लोग सोडा वाटर इंटेक बढ़ा देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, या फिर देसी दवाइयों की तरफ जाते हैं कि अगर हम ये खा लेंगे तो हमारी जो स्टोन है जो हमारा ये पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके
1: तो
0: बारे
1: एक
0: में?
1: काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि जो है ना जैसे हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम स्टोन जो है निकल सकते हैं यदि वो छोटे स्टोन है,
0: जी
1: ठीक है, यदि लेस देन 5 mm के स्टोन है, क्योंकि जो हमारी मूत्र नलियाँ जिनको हम यूरेटर बोलते हैं तो वो उनका जो 5 से 6 mm का डायमीटर होता है, तो वहाँ से 5 से 6 mm वाले स्टोन निकल जाते हैं स्पॉन्टेनियसली। अपार्ट फ्रॉम यदि बड़े स्टोन हैं तो उसमें भी मरीजों को जो भी है जिसको भी स्टोन है उसको उसको लाइटली नहीं लेना,

0: फॉलोअप में रहना है. सपोज वो यदि उसमें कोई स्वेलिंग आ रही है किडनी में, अब वो उसमें भी ग्रेडिंग होती है कि कितना स्वेलिंग है. बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो हमें उसमें प्रोमेंटली एकदम एक्ट करना पड़ता है कि हमें किडनी बचानी है. लेकिन कई स्टोन ऐसे हैं जो स्वेलिंग नहीं कर रहे हैं, चुपचाप शांत बैठे हुए हैं, तो उनको हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं. लेकिन ऑब्जर्वेशन में हम 6 मंथली उन मरीज को नॉर्मली बुलाते हैं कि हाँ, ताकि फॉलोअप में रहें, कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं. यदि चेंजेस आती है तो हम एकदम फिर उसमें एक्शन लेने की प्लान करते हैं. तो इस हिसाब से हम उनको फॉलोअप करते हैं.
1: जी जी डॉक्टर साहब, जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियों की बात थोड़ा सा गंभीरता लाती है माहौल में. तो थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए एक गीत सुनते हैं. और हमारे कार्यक्रम की ये रिवायत भी है कि हम अपने विशेषज्ञों की पसंद का गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को. तो बताइए, आपकी पसंद का कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं मैंने दिया पानी द रंग, क्योंकि एक जिस टॉक को हम आज कर रहे हैं
1: जी,
0: ठीक है कि यदि जिंदगी में भी जो है ना, हमारे ये मानेंगे हमारे शरीर का रंग अच्छा तभी होगा, त्वचा का रंग अच्छा तभी होगा जब हम पानी अच्छी क्वांटिटी में पीनेंगे. तो मैं चाहता हूँ यदि आप पानी द रंग.
1: जी, पानी दा रंग सॉन्ग आप अब हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं. तो चलिए डॉक्टर साहब, आपके साथ साथ हम भी इंजॉय करते हैं इस गीत को. और इस गीत के बाद हम फिर से लौट कर आएंगे इसी चर्चा के साथ, जिसका शीर्षक है गुर्दे की पथरी.

0: जी हाँ बिल्कुल, पानी का ये गीत आपने सुनवाया। बेशक इसके भाव कुछ और थे, लेकिन हम पानी की महत्ता के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में पानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है और अगर हम पानी कम पीते हैं तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, या फिर नए नए कंसेप्ट जब आते हैं ना, या फिर हम ये कहें कि बहुत सारे ऐसे मिथ भी जो हैं वो फैलते जाते हैं एक दूसरे के जरिए कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन विशेषज्ञ जो हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं और वो ओवरऑल कम्युनिटी के लिए मैसेज जो है वो डिलीवर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम गुर्दे की पथरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके ट्रीटमेंट की बात हम कर रहे थे कि छोटी पथरियां जो हैं वो ट्रीटमेंट के जरिए निकल जाती हैं। तो मान लीजिए अगर कोई पथरी किसी में है, मेल या फीमेल किसी में भी या बच्चे में, ट्रीटमेंट के बाद वो निकल गई पथरी, तो क्या दोबारा बनने की टेंडेंसी रहती है?
1: मैम, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। दोबारा जो है, हम ये मानते हैं कि 5 साल में जो है 10 से 15% चांसेस होता है कि दोबारा जो है स्टोन बन सकते हैं।
0: जी
1: अब यहाँ पे है अवेयरनेस, कि जब हम नॉर्मली जिसका भी सपोज किसी को एडवाइस कर रहे हैं या किसी का ऑपरेशन करते हैं, पथरी निकाल देते हैं, तो हम नॉर्मली उनको ये बोलते हैं कि आपको जो है रेगुलर फॉलोअप में रहना है, पानी की मात्रा एडिक्वेट जो है लेनी है,
0: जी
1: यूरिन का कलर हमेशा जो है वाइट होना चाहिए,
0: जी हाँ
1: हल्का पीला हो सकता है पर ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए। उसके अलावा खान पीन पे बहुत ध्यान देना है।
0: जी
1: बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कुछ लोग स्नैक्स खाते हैं, ठीक है, तो स्नैक्स जितने भी हैं आजकल, या फिर जो है आपका जो है ना जितनी भी मतलब जो दुकान इसमें शॉप की में मिलती हैं, जिसने हम बोल सकते हैं कि जो फूड्स आइटम है
0: ये फिर जो हमारे पेय पदार्थ
1: हाँ
0: हैं।
1: पेय पदार्थ हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें एक तो एडिड शुगर्स होती हैं और स्नैक्स हैं, ठीक है, जैसे मूंगफली हो गई, चना हो गया, शाम को जो है लगा मन की नहीं मेरे को थोड़ी भूख लग रही है तो मैं कुछ जो है ना नमकीन खा लेता हूँ,
0: जी
1: इनमें सब में क्या है सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है। घरों में तो आप नमक की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हो,
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन इनमें आप नहीं कर
0: ये
1: सकते हो।
0: प्रोडक्ट तो पहले से
1: तो
0: प्रिपेयर्ड होते हैं।
1: तो मैसेज ये देना है हमें पब्लिक को कि आपका स्टोन तो चलो निकल गया, आगे ना होए।
0: जी
1: मेरे पास आप इमेजिन नहीं कर सकते, कुछ पेशेंट ऐसे आए जो दो दो बार ऑपरेट हो चुके हैं, अब वो खुद ही और पथरियां अभी भी हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब अब हमने ऑपरेशन नहीं करवाना, हम थक चुके हैं।
0: जी
1: तो जब उनका देखते हैं कि उनका हम टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं कि कुछ ऐसे कण हैं यूरिन में जिनकी वजह से ही वो स्टोन बन रहे हैं,
0: जी
1: तो उसी पे फोकस करो, ठीक है, कि आप जो है ना आपका पेय पदार्थ, ये जितना भी कोक्स होगी ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, सुगरी है, ठीक है, जो नॉर्मली मिलती हैं पेप्सी हो गया कोक हो गया, तो इसको नहीं लेना है।
0: जी, हाँ बिल्कुल। और जैसे कि अभी पहले हमारी बात हो रही थी तो आपने कहा कि इन चीज़ों को मैं तो बिल्कुल नहीं लेता और मैं सिंपल पानी को प्रेफर करता हूँ, तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो ये आम जनमानस को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जो जानकार व्यक्ति होते हैं उनको देखकर दूसरे व्यक्ति जो है ना वो थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि ये लोग अगर इतने अवेयर हैं, सब कुछ जानबूझकर भी अगर हम इन चीज़ों को ले रहे हैं तो ये हमारी गलती होती है, लेकिन हमारे विशेषज्ञ जो बताते हैं उन चीज़ों को अगर हम अवॉइड करें ना तो बहुत सारी समस्याओं से हम ऑटोमेटिकली बच ही सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के ऊपर ही हम दोबारा से फोकस करेंगे कि एक तो हो गया कि दवाइयों के माध्यम से पथरी निकल जाती हैं, और क्या-क्या विकल्प रहते हैं इसके?
1: दूसरे विकल्प में डिपेंड करता है कि पथरी कहाँ है, किडनी में है कि उसके नीचे जो हम मूत्र नली जिसको यूरेटर है ब्लैडर में, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। कुछ में आपको जो है जैसे एक होती है जिसमें लिथोट्रिप्सी वेस्ट होती है, कि स्टोन का साइज जो है एक लेस देन छोटा है, मीन लेस देन 2 सेंटीमीटर है, और वो ऐसी लोकेशन में है जिसको हम बाहर से किरणों से तोड़ सकते हैं, जिसके लिए नॉर्मली मरीज को हॉस्पिटल आना है 2 घंटे के लिए रहना है और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा,
0: जी
1: जो एक तरह से लिथोट्रिप्सी बाहर से जिसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं होगा। इसके अलावा जो एनेस्थीसिया वाली जो सर्जरीज हो सकती हैं, जैसे आजकल जो है ओपन सर्जरी सारी जो है बंद हो चुकी हैं, क्योंकि
0: जी
1: अब आ गया है आजकल एडवांस टेक्निक आ गई की हैं, ठीक है, कि लेजर से ऑपरेशन होना है, छोटा सा जो है ना छेद, मतलब आप सोचते हैं पेन से भी कम साइज का जो है ना उसमें हमने किडनी में जाना है, पथरी को जो है तोड़ना है, और नॉर्मली उसके बाद हम स्टेंट डालते हैं।
0: जी
1: कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि जैसे मतलब सपोज किसी की आर्डनी किडनी के फंक्शन जो डिरेंज हो चुके हैं, या फिर जो है स्वेलिंग बहुत आ गई है, उन
0: जी
1: जगहों पे पहले हम स्टेंट डाल देते हैं, और उसके जो है 2-3 महीने में जो है या 1 महीने के बाद जब किडनी की स्वेलिंग कम हो जाती है और

0: इन्फेक्शन के साइन कम हो जाते हैं तब हम ऑपरेशन करते हैं।
1: तो
0: लोकेशन के हिसाब से है कहाँ पे पत्थरी है। आप नीचे से भी आज नई एडवांस ऐसी आ रही है कि कोई बिना चीरे के बिना किसी के जो है ना किडनी में छेद किए आप नीचे से ही जाएंगे पेशाब के रास्ते से और किडनी का स्टोन को जो है ना लेजर से तोड़ के वो भी कर सकते हैं। बट ये है कि कितने साइज का स्टोन है कहाँ पे लोकेटेड है
1: ये आप ही डिसाइड
0: वो क्लिनिशियन ही डिसाइड करेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कहा डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोगों में ये भ्रम भी रहता है कि ऑपरेशन करवाने से हमारे गुर्दे की जो कार्यशीलता है कार्यक्षमता है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए वो फिर अगर डॉक्टर बताते भी हैं कि सर्जरी होगी तब भी वो फिर दाएं बाएं भागना शुरू कर देते हैं कि कोई और विकल्प देखें। तो अगर मान लीजिए लंबे समय तक ये अनट्रीटेड रहे तो क्या हो सकता है?
0: तो यदि जितनी भी आज की डेट में स्टडीज़ हुई हैं उन स्टडीज़ में ही पाया गया है कि हम जो जब भी पत्थरी का इलाज करेंगे चाहे हम किडनी में थोड़ा छोटा सा छेद करके करेंगे लेजर से करेंगे तो उन स्टडी में पाया गया कि ओवरऑल जो किडनी के फंक्शन उतने कम नहीं होते हैं, बहुत ही निग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट है। हाँ लेकिन यदि कोई नेगलेक्ट करता है स्टोन को कि नहीं मुझे नहीं इलाज करवाना, ऐसे भी मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमने ऑपरेशन नहीं करवाना हम जो है ना ऐसे चले रहेंगे, तो इसमें क्या है बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांस हैं, यूरिन में ब्लड आने के चांस हैं और एंड में किडनी भी खराब हो जाएगी। मतलब मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो डायलिसिस पे गए हैं किडनी स्टोन की वजह से।
1: जी जी तो वो स्थिति ना आए उससे पहले ही जैसा हमें डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो कर लेना चाहिए। और डॉक्टर साहब मान लीजिए अगर किसी की सर्जरी हुई है तो आफ्टर सर्जरी उसको क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरत होती है?
0: उनको एटलीस्ट कुछ टाइम तक जो है ना हम बोलते हैं कि एक हफ्ते तक बेड रेस्ट लेना है, क्योंकि जब भी किडनी क्योंकि एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें 20-25% हार्ट का ब्लड फ्लो वहां जाता है, तो रेस्ट जो है कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए, और उसके बाद वजन नहीं उठाना है, एडिक्वेट पानी पीना है, स्टेंट नॉर्मली डलते हैं सर्जरी के बाद तो जो है उसमें हल्का फुल्का पेशाब में जलन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जलन हो रही है ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो तुरंत जो है ना जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है या जहाँ पे भी आप जा सकते हैं नज़दीक डॉक्टर को दिखाइए। और फ्यूचर में आपको यही है कि पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ठीक है, आपका खान पान के ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए, कम नमक लेना है, ठीक है, यदि मोटापा है तो एक्सरसाइज करिए, ठीक है, वेट को जो है रिड्यूस करिए, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। तो लेकिन आज का मैसेज मैं यही मैं बोलूँगा कि पानी की मात्रा हमेशा आपके हाथ में पानी की बॉटल होनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो।
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। और अब बात आती है डाइट की, कि डाइट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपने कहा कि खराब खान पान के लिए, तो आजकल का तो माहौल ही ऐसा है, कुछ चलन ही ऐसा हो गया है कि हम हर कुछ प्रेफर करते हैं जो हमारी जीभ को स्वादिष्ट लगता है। तो आपके हिसाब से किस तरह की डाइट होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है?
0: अब डाइट की मैं सुबह के ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं
1: जी।
0: अब मैं बोलूँगा कि आज देखिए हम पुराने टाइम में घर में जो है ना सिम चपातियाँ बनती थी, आज हमारी डाइट चली गई है ब्रेड पे, लेकिन ब्रेड भी एक ऐसा है, एक है जो एक स्टोन फॉर्मेशन में जो है हेल्प करता है
1: जी।
0: तो आप दलिया ले लीजिए, आप जो है और हमारे घर में बहुत चीज़ें हैं जो ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो है ओट्स ले सकते हैं, ये है नॉर्मल ब्रेकफास्ट। और फ्रूट्स आपके ब्रेकफास्ट में होने ही चाहिए। अब फ्रूट में आप जो है केला ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, ठीक है, अमरूद ले सकते हैं, इन और सिट्रस फ्रूट जितने लेमन वाला आप आजकल गर्मियाँ हैं तो लेमन वाटर जो है प्रेफर करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी डाइट की, क्या चीज़ें, अब बहुत पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या मैं खाऊं, ये नॉर्मली एक क्वेश्चन होता है जो हमें भी हमेशा जो है ना कि क्या खाएं, तो हम उनसे पूछते हैं आप क्या खाना चाहते हैं, पहला क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्या प्रेफरेंस क्या है आपका, क्या आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है। अब कोई बोलता है कि नहीं सर मैं मांसाहारी हूँ मुझे, तो हम उनको ये बोलते हैं ठीक है आप मांस ले सकते हैं लेकिन ऐसा है हफ्ते में 2 बार, लेकिन आप ये लो चीज की एक पीस
1: जी।
0: आप ऐसा नहीं करिए कि अब मैंने आधा किलो आज जो है मांस लेना है मन कर रहा है, तो कोई भी चीज एक्सेस लेंगे। क्वेश्चन दूसरा आ जाता है कि सर हम दाल कौन सी लें, आप सभी दालें ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आप ये लीजिए ये चूज करिए, ऐसा नहीं है, यदि जो आपको सूट करती है चाहे आप चने की लीजिए चाहे आप जो है मूंग दाल लीजिए चाहे आप जो है कोई और दाल लीजिए उड़द की दाल ले लीजिए, जो आपको मतलब एडजस्ट कर रही है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है कम मात्रा में, मतलब आपका एक तो मन भी भरना चाहिए और जो है पेट भी जो है ना हो गया शांत कि नहीं दोनों तरफ से ठीक है कि नहीं मैंने ले लिया, क्योंकि बैलेंस लेना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो है फ्रूट्स तो है ही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, दूध आप जरूर लीजिए, दही जरूर लीजिए, ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, दूध दही जो है हमारी डाइट

0: में होना चाहिए।
1: जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो कुछ इसी तरह का खाते थे, वो कुछ ज्यादा अगर हम कहें कि वो सब्जियां बाजारी चीजें वो कम खाते थे। हमने देखा है कि गर्मियों के दिनों में छाछ, पुदीना वाला नमक, और मान लीजिए सब्जी नहीं भी है तो वो वाला नमक लगा के चपाती पे घी लगाते थे और मजे से खाते थे। और हमने देखा है कि उस समय ये समस्याएं बहुत कम होती थी, और आजकल हम शॉर्टकट्स अपनाना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि नींबू पानी, तो बाजार का बना हुआ जो बॉटल बंद होता है वो नींबू पानी हम लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप हमारे श्रोताओं को ये मैसेज दीजिए कि क्या ये चीजें लेनी चाहिए, या अगर मान लीजिए कहीं नहीं कुछ और अवेलेबल हो रहा है, कहीं एक दो बार ले ली तो उसकी कोई समस्या है या ली जा सकती है?
0: देखिए, मतलब अब 100% तो हमें कभी भी परफेक्ट नहीं होता इंसान, ठीक है, लेकिन एक सपोज आप ट्रेवल कर रहे हैं, प्यास लगी हुई है, नॉर्मल पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब आपको जो है ना कहीं नींबू पानी है, कोकोनट वाटर है, आप प्रेफर करिए, कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। नींबू पानी मिल रहा है सड़क किनारे, कोई अच्छा जो है ना नींबू पुदीने वाला पानी, तो आप जरूर लीजिए, उसको मैं कभी मना नहीं करूंगा। हाँ, मैं जरूर बोलूंगा कि कैंड वाटर है जो भरा हुआ है,
1: दिनों से बंद
0: पड़ा हुआ है, पहले वो धूप में रखी हुई थी, उसके बाद उसने फ्रिज में रखा, वो प्लास्टिक में है, उन चीजों को अवॉइड करिए।
1: जी जी। और डॉक्टर साहब, मिलेट्स का कितना रोल रहता है
0: हमारे जो आज है? मिलेट्स हैं, मोटा अनाज बहुत चर्चा में है हमारे, जो मतलब हर डाइट में मैं चाहता हूँ कि जैसे ओट्स मैंने बताए, ठीक है, रागी, ठीक है, बाजरा है। अब आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं मेरी डाइट में नॉर्मली जो है ना पिछले 2-3 साल से मैंने ये चेंजेस किए हैं कि आप होता क्या है कि हमेशा नॉर्मली घरों में एक ही गेहूं की रोटी बनेगी, नहीं, आप उसको चेंज करिए, कभी आप में आप मिक्स जो है रोटी बनाइए, कभी उसमें बाजरा डाल सकते हो, रागी डाल सकते हो, ठीक है, तो मिक्स रोटी, और ये चीजें जो है काफी हेल्पफुल है। ओट्स हैं, ओट्स में फाइबर बहुत ज्यादा है जो हमारे लिए जो है किडनी की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है, और अपार्ट फ्रॉम जो है बॉडी को जो है ना एक तरह से वेट वगैरह मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये मिलेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज की डाइट में होने चाहिए। यदि आप पुराने जमाने में देखेंगे तो हमारे बुजुर्ग जैसे आपने बताया वो सब चीजों पर चलते, तो आज भी मैं देखता हूँ हमारे कई पेशेंट ऐसे होते हैं 90 साल के हैं, 100 साल के हैं, तो और मैं आपको इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि कई बार मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ, मेरे पेशेंट नॉर्मली मैं जितने भी उनसे बड़ा मतलब मेरे को मोहब्बत जैसी होती है कि हाँ कि देखो एक तो फिट फाइन है चले हुए, तो मैं नॉर्मली ऑपरेट करता हूँ, पूछता हूँ कि उम्र कितनी है इनकी, तो देखने को तो मुझे लगते हैं कि 70, लेकिन हो रहे हैं 90 साल के, तो वो मतलब देखिए आप कितने एक्टिव हैं।
1: सब और, कुछ खान पान पे ही निर्भर करता है ना, और कुछ अपने एक्टिव रहने,
0: और उस टाइम वो आप सोचिए ना कोई खादें डाली जाती थी, इतना होते ही थे फर्टिलाइजर और इतना अच्छा ऑर्गेनिक, आज हम दोबारा उसी लाइन में चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीजें ढूंढ रहे हैं,
1: कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तरफ चलें, लेकिन फिर भी उसमें भी हम मॉडर्नाइजेशन का टच जो है ना वो डालना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आप हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं। एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवा दें।
0: हाँ जी मैम, जिंदगी एक सफर है सुहाना, मुझे लगता है ये गाना जिंदगी के से काफी जुड़ा हुआ है और आप आज पब्लिक के लिए भी ये काफी अच्छा एड्रेस देगा।
1: जी चलिए, तो ये गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर से इसी कार्यक्रम में इसी जानकारी के साथ, किडनी स्टोन की जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे।

0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, होंठों में मुस्कान तो तभी रहती है जब हमें शारीरिक समस्या नहीं होती, और जब शारीरिक समस्या होती है तो हंसने की बात तो हम भूल ही जाते हैं, परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किडनी स्टोन की हम बात कर रहे हैं तो एक बात आपसे ज़रूर यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि जैसे स्टूडेंट्स हैं या धूप में काम करने वाले लोग हैं या फिर स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, तो उनको किसी विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि किडनी स्टोन ना हो?
1: मैम, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। स्कूल, जब मैं स्कूल की बात करता हूँ तो इस पहली बात तो है, जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आजकल गर्मियों का समय है, स्कूलों में जो पंखे तो लगे होते हैं, बच्चे खेलने कूदने वाले में बहुत माहिर होते हैं,
0: जी हाँ,
1: कभी उछल कूद कर रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट जो है ये जो उनको टीचिंग बच्चों को पेरेंट्स से लेकर टीचर तक जाए, पेरेंट्स जो है मतलब गार्डियन जितने भी हैं वो उनको जो है प्रोपेल करें कि उनको बोलें कि नहीं बेटा आपको पानी पीना है, खुद उनके सामने एक गिलास पानी रखें, जब सुबह हैं, दोपहर को जब भी आए, जब आप ले रहे हैं तभी तुरंत उनके सामने, और उनको आप बोलना है कि मिल पीना। दूसरा, स्कूल में जो टीचर है उनको भी ध्यान रखना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लीटर की पानी की बोतलें क्या वो शाम तक खाली हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि यदि सपोज जो है उस पर हमें देखो एक तरह से बच्चों को भी प्रिवेंट करना है कि वो उनको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, तो एटलीस्ट ये स्कूल लेवल पे बहुत जरूरी है कि टीचर उनको जो है ना बोले कि नहीं बेटा ये पानी की बोतल आपको पी के पूरी खत्म करनी है तभी घर जाना है, ठीक है,
0: और उसका महत्व भी समझाएं।
1: तो एटलीस्ट जो है महत्व ये समझाएंगे कि नहीं बेटा यूरिन साफ होना चाहिए, तो उसमें यूरिन में जलन नहीं होगी, ठीक है, स्टोन बनने के चांसेस नहीं होंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा। अब आ जाते हैं कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर, जो हमारा यूथ है, यूथ में नॉर्मली क्या है, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट है, पेप्सी कोक, ठीक है, इस मिरिंडा हो गया या फिर जो है इस तरह की चीज़ें सोडा हो गया, इनको प्रेफरेंस करते हैं, तो उनको भी ये सोचना है कि देखो आपको जो है यदि आप नॉर्मल पानी पिएंगे वो तो वाटर बॉटल बट नॉट द कोक बॉटल, ठीक है, तो वाटर बॉटल इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपको फ्यूचर में किडनी स्टोन से बचाएंगे और एटलीस्ट आप देखो और चीज़ों से बचाएंगे, आपकी त्वचा हमेशा जो है ठीक रहेगी, शाइनिंग होगी,

0: ठीक है, ऊपर से बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है, मन ठीक रहेगा, उचाट नहीं रहेगा मन में, नहीं तो छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये सब जुड़ी हुई हैं चीजें।
1: जी, कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि जो बाहर काम करते हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धूप में पानी की जरूरत
0: अब
1: सबसे
0: हमारे
1: ज्यादा
0: किसान
1: पसीना निकलता
0: किसान
1: है।
0: भाई बहन आजकल काम चल रहा है, ठीक है,
1: जी
0: तो इन सबको जो है पानी की काफी जरूरत है, तो हमेशा अपने साथ पानी की बॉटल रखें। पुलिस वर्कर हैं,
1: जी
0: पुलिस फोर्स वाले खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं,
1: जी
0: तो उनको भी हाथ में हमेशा पानी की बॉटल होनी चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: आप पसीना इतना बहा रहे हैं तो इतना डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे कि किडनी में स्टोन बनेंगे ही बनेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, अब और कार्यक्रम में बिल्कुल भी समय नहीं बचता कि हम और जानकारी आपसे ले पाएं, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपने अपना इतना कीमती समय निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे यहाँ आने से एटलीस्ट जनता को कुछ ना कुछ फ़ायदा होए, ताकि हम जो है गर्मियों में एटलीस्ट एक चीज़ मैसेज दे सकें कि स्टोन ना बने,
1: जी
0: किडनी स्टोन।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 9:20 होने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: ये थे एफएम शिमला पर प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य आकर्षण। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा सकेंगे दाखिल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिमी बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में सभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए TMC के 15 साल के शासन का अंत किया है। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती 2 दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5,989 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 209 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4,180, शिमला में 2,675, चंबा में 2,581, ऊना में 1,900

0: 41, सिरमौर में 1,797, हमीरपुर में 1,548, सोलन में 1,543, कुल्लू में 1,504, बिलासपुर में 1,281, किन्नौर में 423 नामांकन पत्र दर्ज किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
1: इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। पंचायती राज चुनाव के लिए सिरमौर जिला में दूसरे दिन बड़ी संख्या में नामांकन दर्ज किए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से 7, 8 और 11 मई नामांकन दाखिल करने की तिथि निर्धारित की गई है और अंतिम दिन और अधिक नामांकन दाखिल होने की उम्मीद है।
2: याद है कि आज दूसरा दिन था नॉमिनेशन का, और अगर मैं इसको अलग अलग कैटेगरी वाइज लाऊं, बिकॉज हमारे जिला सिरमौर में टोटल 8 ब्लॉक हैं, तो टोटल अब तक जिला परिषद के हमारी 29 नॉमिनेशन फाइल हुई हैं। पंचायत समिति की हमारी टोटल 198 नॉमिनेशन फाइल हुई हैं, तो टोटल 703 लोगों ने प्रधानी के लिए अपनी नॉमिनेशन फाइल की है। उप प्रधान टोटल मैं बताऊँ 536 और वार्ड मेंबर्स के लिए टोटल 1240 तक नॉमिनेशन फाइल हुई है। तीसरा दिन हमारा जो आखिरी दिन होगा नॉमिनेशन फाइल करने का, वो 11 तारीख होगी मंडे।
1: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जिसे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश के 93,870 राजस्व गांवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा किसानों के आंकड़े सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया इन दिनों ऊना जिला में जारी है और अब तक लगभग 72,000 खसरा नंबरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जो किसानों द्वारा कृषि अथवा बागवानी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इनमें से लगभग 28,000 सर्वेक्षण स्वीकृत भी हो चुके हैं। सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और GPS तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द अपना ऑनलाइन कृषक पंजीकरण नजदीकी लोक मित्र केंद्र अथवा एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल OTP नंबर के लिए अपने पास रखना आवश्यक होगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया और मलेशिया सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार इन देशों में विश्व के करीब 68% किसान रहते हैं। ये सम्मेलन 2 चरण में आयोजित होगा। पहला चरण आज से शुरू होकर 11 जून तक चलेगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट खेती,

जलवायु परिवर्तन और किसान कल्याण जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 से शुरू की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति प्रेमी व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ई बर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपलोड कर सकेंगे। नए वैश्विक आर्थिक क्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शिमला में शुरू हुआ। कोर्सेरा कॉलेज शिमला और देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी गोविंदगढ़ पंजाब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने किया। उन्होंने सम्मेलन को आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण करार देते हुए कहा कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, जो सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, ऊना में खैर कटान मामले में एसआईटी गठित कर नए सिरे से जांच के आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण पर दिए झूठे आश्वासन पर मुख्य सचिव तलब। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, सुक्खू सरकार ने आम लोगों के लिए खोले सभी सर्किट हाउस। पंजाब केसरी व दिव्य हिमाचल के एक जैसे शब्द हैं, हिमाचल में पहली बार मतगणना केंद्रों पर होगी वीडियोग्राफी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कचरा फैलाने वाले होटलों, उद्योगों व संस्थानों के बिजली पानी कनेक्शन काट सकेंगे डीसी। अमर उजाला की एक अन्य सुर्खी है, जिला परिषद और बीडीसी अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता समाप्त। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कल बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए। 11 मई को भी नामांकन पत्र किए जा सकेंगे दाखिल। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन। जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए समय सीमा की अनिवार्यता खत्म। प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से होगा उत्पादन का सटीक आकलन। प्रदेश में 3 लाख से अधिक किसान योजना से जुड़े। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत कृषि कार्य समूह का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:30 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
1: टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
2: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चली गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाईं। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

0: मजबूर।
1: सबसे दिलचस्प बात ये है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर बाद कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता सुरेंद्र अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज

इसे 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बृहस्पतिवार तक लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: sacrifice will forever be etched in golden letters in the annals of Indian history. He added that the struggles of Maharana Pratap for the honor and independence of the motherland will continue to inspire generations to come. National Legal Services Authority will organize the second National Lok Adalat of 2026 across the country today. Talking to Akashwani News Member Secretary Nalsa, Sanjeev Pandey said that the initiative aims to provide amicable settlement of disputes and reduce the burden on courts through participatory and public-centric mechanisms. He said that a wide range of disputes are taken up during the Lok Adalat, including criminal compoundable cases, check dishonor matters and bank recovery disputes. Two new suspected cases of Hanta virus were reported yesterday, one in Spain and the other on the remote South Atlantic island of Tristan da Cunha, as experts race to contain an outbreak that began on a luxury cruise ship. The announcements in locations thousands of miles apart will fuel concern about the spread of a virus so far associated with three deaths, though the World Health Organization has repeatedly said the risk of the wider public is low and the virus does not transmit easily. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets at the Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर. अब लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता. आज का हमारा विषय है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस. यह दिवस हर वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि लोगों को प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और प्रकृति के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके. जब मौसम बदलता है तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके कई पक्षी एक देश से दूसरे देश पहुंचते हैं और इन्हें ही कहा जाता है प्रवासी पक्षी. कुछ पक्षी पूरे वर्ष एक ही स्थान पर रहते हैं लेकिन कुछ पक्षी मौसम बदलने पर दूसरे देशों या क्षेत्रों की ओर उड़ जाते हैं. जब किसी स्थान पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है या भोजन की कमी हो जाती है तब ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूर ऐसे स्थानों की ओर चले जाते हैं जहां मौसम अनुकूल हो और भोजन आसानी से मिल सके. सर्दियों के मौसम में भारत में भी कई सुंदर प्रवासी पक्षी आते हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन, बॉर हेडेड गूज, फ्लेमिंगो और पेलिकन. इनकी यात्रा सचमुच अद्भुत होती है. कुछ प्रवासी पक्षी एक बार में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरते हैं और कई पक्षी सितारों, सूरज और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की मदद से अपना रास्ता पहचानते हैं. हर वक्ष लगभग उसी स्थान पर वापस लौटते हैं कुछ पक्षी और प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था वास्तव में आश्चर्यजनक है. दोस्तों, आज प्रवासी पक्षियों का जीवन आसान नहीं है. उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि पेड़ों के कम होने से उन्हें सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाते, जल और वायु प्रदूषण उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और मौसम में बदलाव के कारण उनकी यात्रा प्रभावित होती है. कुछ लोग पक्षियों का अवैध शिकार भी करते हैं जो बहुत गलत है और झीलों और नदियों में फैला प्लास्टिक पक्षियों के लिए खतरा बनता जा रहा है. मत काटो जंगल सारे यहीं बसेंगे ये पक्षी सारे, नीला अंबर खुली हवाएं बस इतनी सी चाहत है हमारी, दूर देश से आते हैं हम, संदेश प्रकृति का लाते हैं हम, धरती को सुंदर रहने दो, प्यार सभी से करते हैं हम. जी हाँ, भारत प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है. दोस्तों, देश की कई झीलें और अभयारण्य इन पक्षियों का स्वागत करते हैं जैसे कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क, चिल्का लेक और कैलेडियो नेशनल पार्क. यहाँ हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं. तो दोस्तों, प्रकृति की रक्षा केवल सरकार का काम नहीं, हम सभी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, इसमें योगदान दे सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पानी के स्रोतों को साफ रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पक्षियों को नुकसान न पहुंचाएं, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी रखें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करते रहें क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और प्रकृति को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. इस तरीके से हम

अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि पक्षी सुरक्षित हैं तो प्रकृति सुरक्षित है। धरती केवल इंसानों की नहीं, हर जीव का घर है। और दोस्तों, उड़ते पंछी कहते हैं प्रकृति से रिश्ता रखते हैं, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, धरती को फिर स्वर्ग बनाओ। ये पक्षियों की तरफ से वो आवाज़ है जो हमें ये संकेत दे रही है कि पर्यावरण के प्रति हमें सजग रहने की बहुत ज़रूरत है। प्रवासी पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि सीमाएं केवल इंसानों की बनाई हुई हैं। कितना खूबसूरत सा संदेश देते हैं ये पक्षी। तो हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे पर, यानी कि प्रवासी पक्षी दिवस पर, ये संकल्प ले सकते हैं कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, पक्षियों से प्रेम करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे, क्योंकि इस तरीके से हम पर्यावरण के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता, विषय था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, राष्ट्रीय विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 10:15 हुए हैं दोस्तों, और हम लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम एक सितारा।

एक सितारा। ये आवाज़ बिल्कुल आप पहचान गए होंगे दोस्तों। जी हाँ, ये आवाज़ है खूबसूरत आवाज़ की मलिका श्रेया घोषाल की।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक सितारा और सुरों की मलिका स्पेशल कार्यक्रम, जिसमें हम बात कर रहे हैं श्रेया घोषाल की। जी हाँ, वो आवाज जिसने अपनी मासूमियत और सुरीलेपन से बॉलीवुड को एक नई दिशा दी। पैरी पिया से लेकर पल पल तक का सफर। जी हाँ, राजस्थान के कोटा के पास रावत भाटा के एक छोटे से कस्बे से निकले श्रेया। जिनके घर में संगीत का माहौल था, वह 16 साल की उम्र में जब वे सारे गामापा में आई तो उनके गुरु कल्याण जी ने उन्हें पहचाना।

प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एक सितारा, और हमारे आज की सितारा है श्रेया घोषाल। जी हाँ, देवदास ने उनकी जिंदगी बदल दी। संजय लीला भंसाली ने उनकी आवाज में वो जादू देखा जो पारो के लिए चाहिए था। श्रेया ने नेशनल अवार्ड से लेकर लाखों दिलों तक का सफर बहुत कम उम्र में तय किया। आइए सुनते हैं देवदास फिल्म से उन्हीं की आवाज में गाया ये खूबसूरत संगीत। इस गीत में इनका साथ दिया है कविता सुब्रमण्यम और केके ने।

जी दोस्तों, श्रेया को इंडियन आइडल में परफॉर्म करते समय अपना बचपन याद आया जब वो अपने गुरुजी के साथ शाहरुख खान की फौजी छुपकर देखती थी। 2015 में शिलादित्य मुखोपाध्याय से उन्होंने शादी की। आज श्रेया न केवल हिंदी बल्कि कई भाषाओं में गाकर 6 नेशनल अवार्ड्स और अनगिनत सम्मान पा चुकी है।

जी हाँ दोस्तों, सुरों की मालिका श्रेया घोषाल, संगीत जगत की उस आवाज को जिसकी मिठास हर दिल को छू जाती है, हम नमन करते हैं। उनकी आवाज में मिठास है, भावनाएं और ऐसा जादू जो सीधे दिल तक पहुंचता है। कहते हैं कि उनकी गायकी का सफर बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गया था। बचपन से ही उन्हें

दोस्तों, श्रेया घोषाल ने अपने सपनों को मेहनत से सच कर दिया। वैसे ही इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हम भी मेहनत से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इसी नोट के साथ अपने रेडियो दोस्त मधु को एक सितारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। हमारी आज की सितारा थी श्रेया घोषाल। अपनी जून के FM हमीरपुर 101.8 MHz पर 10:45 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

जी लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियों जो रितु कपिल दा नमस्कार जी राम राम उम्मीद करते तो सभी ठीक ठाक होने दिखा हिमाचल दी ठंडिया ठंडिया वादियों बिच रुखा थले इस गर्मी के मौसम बिच बैठने का एक अलग ही नज़ारा है तो आओ पल भर असं भी नज़ारा ले लीए बैठने का और इस गीता का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जी लोकरंग कार्यक्रम इस वक्त से सुनी कर दे आकाशवाणी हमीरपुर से एक होर बढ़िया जी आवाज सोमदत्त बट्टू आवाज सुन दे इन्हें गाया गीत गोरी दा मन लग गया चंबे दिया तारा।

अभी आप सुन रहे थे लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 11 बजने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि टैगोर की रचनाएं मानवता, भाईचारे और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। गीतांजलि ने मानवता और अध्यात्म को नई राह दिखाई, जबकि जनगणमन ने देश की एकता और सम्मान को स्वर दिया। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती दो दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
1: राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 5,989 जबकि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम 209 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मंडी में 4,180, शिमला में 2,675, चंबा में 2,581, ऊना में 1,941, सिरमौर में 1,797, हमीरपुर में 1,548, सोलन में 1,543, कुल्लू में 1,504, बिलासपुर में 1,281, किन्नौर में 423 नामांकन पत्र दर्ज किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं कौशल्या शर्मा।
0: इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश की कुल 31,182 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया है। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता को खत्म किया गया है। अध्यादेश के अनुसार अब संबंधित उपायुक्त व उपमंडलाधिकारी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार कभी भी चुनाव करवा सकेंगे। संशोधित अधिनियम को 6 माह के भीतर विधानसभा के अंदर पारित करना अनिवार्य होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के लिए 7 दिन के भीतर बैठक बुलाना जरूरी होता था और 2/3 कोरम पूरा होने पर चुनाव परिणाम घोषित किए जाते थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज प्रदेश के सभी जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया के निर्देशानुसार इन लोक अदालतों में बैंक मामलों, श्रम विवादों और बिजली व पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों सहित अन्य लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए अब तक करीब 63,000 मामले प्राप्त हुए हैं। डिजिटल

0: स्थल सर्वेक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वास्तविक समय में खेतों में बोई गई फसलों का सटीक आंकड़ा एकत्र किया जाता है, जिससे किसानों और फसलों का विश्वसनीय डेटाबेस तैयार कर कृषि योजना और बीमा दावों में तेजी लाई जा सके। केंद्र की इस योजना के तहत प्रदेश के 93,870 राजस्व गांवों में फसलों का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है और प्रदेश में अब तक 3,00,000 से ज्यादा किसानों के आंकड़े सर्वेक्षण के दायरे में आ चुके हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे ऊना जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया इन दिनों ऊना जिला में जारी है और अब तक लगभग 72,000 खसरा नंबरों के सर्वेक्षण किए जा चुके हैं, जो किसानों द्वारा कृषि अथवा बागवानी के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। इनमें से लगभग 28,000 सर्वेक्षण स्वीकृत भी हो चुके हैं। सर्वेक्षण में मोबाइल ऐप और जीपीएस तकनीक के माध्यम से फसलों की मैपिंग की जा रही है, ताकि किसानों की भूमि के रिकॉर्ड को फसल संबंधी जानकारी से जोड़ा जा सके। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जिन किसानों का अभी तक इस पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हुआ है, वे जल्द अपना ऑनलाइन कृषक पंजीकरण नजदीकी लोकमित्र केंद्र अथवा एग्रीस्टैक पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि का कोई भी खसरा नंबर तथा आधार से लिंक मोबाइल ओटीपी नंबर के लिए अपने पास रखना आवश्यक होगा। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न पक्षियों की गणना के लिए आज प्रदेश के सभी 12 जिलों में हिमालयन बर्ड काउंट अभियान आयोजित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 से की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार हिमालय विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और दुनिया की करीब 10% पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इस अभियान में वन अधिकारियों के अलावा स्कूली छात्र, प्रकृति व पक्षी प्रेमी और स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा। अभियान के दौरान प्रतिभागी अपनी जानकारी ई बर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:06 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की कार्यक्रम।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है,

बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज भूपेंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर के गाए फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही। और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना, कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज़ भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज़ नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है। और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने ही दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन जो

इच्छी रूपी मन है वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर जो कि 1974 की फिल्म है उसका एक गीत है, कौन सा बताइए। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका है शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहाँ तक गीत की बात है लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है, जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों लेकिन जो प्यार है बीच का प्यार है वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाजी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ

0: बेमिसाल किस्से
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर जाने।

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं और अब आप सुनेंगे पहाड़ी गीतों का कार्यक्रम देवधरा के गीत।

0: देवधरा के गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: देवधरा के गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है और अब आपको सुनवा रहे हैं लीलावती की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, पहाड़ी लोकगीत। आप इस समय सुन रहे हैं देवधरा के गीत कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी हमीरपुर से।

0: देवधरा के गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। बिल्कुल, ठंडे पानी का महत्व बढ़ जाता है, खासकर गर्मी के दिनों में, और अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी पीते रहिए, यही इस गीत का संदेश है। देखिए, हमारी पहाड़ी गीत जो होते हैं बहुत मिठास भरे होते हैं, और गीतों में अपनी एक जो मिठास है, जो वहाँ का लोकल हमारा खान पान है, उसकी महक जो है वो यूं ही गीतों की सुगंध लिए होती है। तो इसी तरह के और भी गीत आपको सुनवाएंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जी, विवाह शादियों का समय चला है और जो लेडीज़ होती हैं वो इन गीतों की जो महक है अपनी आवाज़ से छेड़ती हैं, तो लगता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ मंगल गान हो रहा है। तो इसी तरह का एक और गीत आपके नज़र करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अगला जो गीत है ये कुसुम धीमान की आवाज़ में आप सुनेंगे, लड़कियों की शादी पर गाया जाने वाला ये लोकगीत है, विवाह संस्कार का गीत।

बेटी तो है धन ही पराया, इसी गीत को, इसी गीत में बार बार यही कहा जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, बाबुल का घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये हमारी गीतों की खूबसूरती है कि जो भी हमारे जो संस्कार होते हैं, हमारे जो बातें होती हैं, वो गीतों के माध्यम से बहुत सहजता से कह दी जाती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा गीत लहरू राम सांख्यान की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं, ये पहाड़ी गीत।

समय हुआ है 12:30 और 40 सेकंड हुए हैं, और इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ FM बैंड 101.8 MHz पर, और अब पेश है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सैनिक भाइयों, जय हिंद। कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्मी गीत, और आज भी बहुत खूबसूरत से गीत आपके लिए लेकर आए हैं हम। इस कार्यक्रम में शुरुआत कर रहे हैं हम

शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं एक्शन रिप्ले फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, जोर का झटका।

जी, जोर का झटका, जोर से लगता है शादी एक ऐसा लड्डू, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो खूबसूरत सा गीत हमने आपको सुनवाया एक्शन रिप्ले फिल्म से। और अगला गीत अब कुछ पुराने दौर का, चलिए लौट चलते हैं उसी दौर की ओर और मुकेश की आवाज़ में आपको खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं। फिल्म तो आप पहचान ही गए होंगे, आनंद।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

जी, पुराना दौर कुछ ख़ास अहमियत रखता है। ये गीत, ये अल्फाज, ये संगीत बरबस ही मन को छूता है ना। तो चलिए एक और ऐसा ही नगमा आपको सुनवाते हैं। एक बार फिर वही आवाज़ है, और इस बार फिल्म हमने ली है अनाड़ी। जब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने हक में, अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और अगला गीत भी बहुत प्यारा है, हमने आपके लिए लिया है बेताब फिल्म से शब्बीर कुमार की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

आवाज देने पर कोई आ जाए तो और क्या चाहिए। सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और लीजिए अब सुनते हैं अगले गीत में क्या कहा जा रहा है। ये दिलवाले फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अपने ज़माने की ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हिट रह चुकी है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ें। खूबसूरत सा गीत, आइए सुनते हैं।

तो इसी के साथ अब आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की हमें अनुमति दीजिए। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 1 बजने को है और अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर, बस थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी, तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे

कार्यक्रम को सुनना समझना पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं, इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है, वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों, असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखती है कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आज़ाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और ये आत्मीय स्नेह

की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं, याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं, इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है, अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है, मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्म आया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे, वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: बैठी पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे।

हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुबु लक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नृत्य जोड़ी थी सई और सुबु लक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपट कर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से सूखी धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ।

एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसा है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार।
1: जमुना की
0: याद कीजिए, फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है।

0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीर भाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने जी। इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है, प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीर भाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी और देखिए आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू। मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी।

मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक, आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटो भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है चिड़िया शब्द? हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ही गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में

0: बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खान पान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।

0: जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैब्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्यधारा से वंचित न रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है।

0: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे के अनुसार इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम व मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में नामांकन पत्र भरने के दूसरे दिन कुल 25,671 नामांकन पत्र भरे गए। इस प्रकार चुनाव के शुरुआती दो दिनों में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 42,562 हो गई है। इसके अलावा 11 मई को भी नामांकन भरे जा सकेंगे। इन चुनावों के लिए 12 मई को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को उम्मीदवार 3 बजे तक अपने नाम वापिस ले सकते हैं। प्रदेश के कुल 31,182 पदों के लिए 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो रहा है। नगर निगमों सहित शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवार लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के नेता भी विभिन्न स्थानों पर अपनी अपनी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में चुनाव प्रचार किया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना है। इस आयोजन में देश भर से छोटे उद्यमी और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। MSME व स्टार्टअप कमेटी के चेयरमैन ज्ञानचंद मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके।
1: सरकार की जो योजनाएं हैं उनको MSME को बताना, क्या ग्रांट्स हैं, क्या सब्सिडी हैं, कैसे लोन पा सकते हैं, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, कंप्लायंस कैसे करना है, सरकार की जो विभिन्न पॉलिसीज हैं उनको कैसे ऑब्जर्व करना है, इन सब चीजों को लेकर के वो DFO ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं MSMEs के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 DFO यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं, जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर विश्व स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव टैगोर असाधारण प्रतिभा के धनी, लेखक, विचारक और कवि थे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने एक असाधारण दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने समाज को नए विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास से समृद्ध किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव को गहरी श्रद्धा व कृतज्ञता के साथ याद किया जाता है और उनके विचार हमेशा लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। आज का विषय है संवहनीय ऊर्जा विकास के लिए लघु जल विद्युत का महत्व। वाचक हैं राकेश शर्मा।
0: जल के प्राकृतिक प्रवाह से उत्पन्न होने वाली पनबिजली दुनिया के सबसे भरोसेमंद और विकसित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत के तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य के बीच ये ग्रिड की स्थिरता ऊर्जा सुरक्षा और प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। सौर और पवन जैसे रुक रुक कर मिलने वाले स्रोतों के विपरीत पन बिजली से लगातार 24 घंटे बिजली मिलती है। जैसे जैसे देश मिलीजुली स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव ला रहा है, जल विद्युत अपरिहार्य बन गई है। इस रणनीतिक महत्व को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लघु पन बिजली विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना से खासतौर पर उन पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों को फायदा होगा जहां

0: इन परियोजनाओं की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। ये मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए है, जिसका कुल परिव्यय 2584.60 करोड़ रुपए है। इस योजना का लक्ष्य लगभग 1500 मेगावाट की नई लघु जल विद्युत क्षमता को विकसित करना है। इसमें पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जहां लघु जल विद्युत की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अक्सर वहां बिजली की पहुंच से जुड़ी चुनौतियां आड़े आती हैं। विकेंद्रीकृत और स्थानीय स्तर पर उत्पादित बिजली को बढ़ावा देकर यह योजना दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक भरोसेमंद बिजली पहुंचाने का प्रयास करती है और साथ ही पारंपरिक ईंधनों पर हमारी निर्भरता को भी कम करती है। ऊर्जा उत्पादन के अलावा इस पहल में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। छोटी पनबिजली परियोजनाएं अपने न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, कम जमीन की जरूरत और लंबी परिचालन अवधि के साथ विकास का एक संवहनीय रास्ता दिखाती हैं। स्थानीय निवेश को बढ़ावा देकर, रोजगार पैदा करके और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करके ये योजना लघु पनबिजली को भारत के स्थायी और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की आधारशिला के रूप में स्थापित करेगी। ये योजना कार्यान्वयन में सहायता करने, परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार करने और विभिन्न क्षेत्रों में लघु पन बिजली परियोजनाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लक्षित उपायों की एक रूपरेखा तैयार करती है। इसका मुख्य ध्यान वित्त पोषण, परियोजना की तैयारी और विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में निष्पादन से जुड़ी बाधाओं को दूर करने पर है। इस योजना से लघु जल विद्युत क्षमता में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। यह योजना स्वदेशी संयंत्रों और मशीनी के उपयोग को बढ़ावा देगी, जिससे स्थानीय विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करेगी। भविष्य की परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन विकसित करने में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की सहायता के लिए अलग से 30 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना से निर्माण चरण के दौरान लगभग 51 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त ये परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में निरंतर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। लघु पन बिजली विकास योजना की स्वीकृति भारत की अप्रयुक्त लघु पन बिजली क्षमता को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लक्षित वित्तीय सहायता, अवसंरचना विकास और संवहनीय संयोजन से यह योजना स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ उपेक्षित क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति देने के लिए तैयार है। लघु जल विद्युत एक संतुलित समाधान प्रदान करता है, जो संवहनीय विकास के साथ ऊर्जा सुरक्षा को जोड़ता है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय 24 घंटे बिजली प्रदान करके और ग्रिड को मजबूत करके। ये परियोजनाएं समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। लघु जल विद्युत भारत के स्वच्छ ऊर्जा के बदलाव के एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय घटक के रूप में उभर रहा है। यह विशेष रूप से पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जहां विकेंद्रीकृत उत्पादन न केवल संवहनीय बिजली प्रदान कर सकता है, बल्कि ऊर्जा पहुंच को बढ़ाकर स्थानीय आजीविका में सहायता भी कर सकता है, जिसमें ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विकास की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। हाल ही में मंजूर की गई लघु पन बिजली विकास योजना के माध्यम से भारत सरकार लक्षित प्रोत्साहन, सरल प्रक्रियाओं और बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के जरिए इस विविध क्षमता का सदुपयोग करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: राम बलराम में गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले, और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन।

0: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, यह आपकी चिट्ठी है।
1: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
0: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
1: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
0: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
1: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
2: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
0: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
2: नंबर 11 पश्चिमी गली।
0: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
2: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
2: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: नित्यानंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जाने चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है। उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए। मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है। उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था। जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम सिंगारम, उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कुछ झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते, जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नामो निशान मिटा दें, इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे,

0: अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
2: सिंगारम, ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
0: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ।

0: है?
1: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
2: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
1: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
2: अच्छा,
1: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
2: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
1: लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
2: अरे तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा आगे पढ़ो बेटा।
1: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
2: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
1: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
2: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
1: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
2: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
1: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
2: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसी ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
1: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
2: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
1: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
2: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
1: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
2: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ आओगे ना बेटा?

0: अरे अरे अरे, जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारक? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे, अरे। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा तो अब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूं रुको।
1: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
2: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
1: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
2: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
1: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है। तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
2: और कोई क्या करेगा?
1: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
2: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
1: अच्छा?
2: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकूंगी।
1: अच्छा, ये बात है?
2: छोड़ मैं अभी।
3: जहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे, दिन भर पड़े एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं त्वचा को, खाल उधेड़ कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
1: अगर मैं अपने दल बल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
2: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
2: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
4: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
2: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
4: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
2: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
4: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
2: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
4: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
2: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
4: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
2: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
4: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने? चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो।

0: अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूं, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है? जब उसका मंगेतर है तब ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है, लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
1: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी
1: पाडाला पिकलाय आंबा आला बाय पाडाला पिकलाय आंब हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा
0: और ये हिंदी गाना
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हाँ, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा, हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुट जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें
3: जी
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
3: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
2: जी,
3: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
2: हाँ।
3: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
2: हाँ।
3: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
2: जी, जी, जी।
3: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
2: हाँ।
3: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
2: वाह वाह
3: जी।
2: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
3: पहला शो 1975 14 अप्रैल
2: जी,
3: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
2: हाँ, हाँ,
3: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
2: क्या बात है
3: जी,
2: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
3: मुहूर्त माना,
2: क्या बात,
3: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
2: क्या बात है
3: जी,
2: ये सिलसिला शुरू हुआ, मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी।
3: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
2: हाँ, हाँ,
3: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा मुझे याद है। छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
2: जी,
3: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है तो वो इतनी खुश हो गई। अच्छा, मुझे बोली अच्छा। तुम मेरे लिए गाओगी? तो बोला हाँ जरूर गाओगी।
2: क्या बात,
3: बहुत मजा आया उससे, बच्चों से लेकर।
2: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
3: जी,
2: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
3: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये, इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
2: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है,
3: राइट।
2: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
3: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
2: क्या बात,
3: आई लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा।
2: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
3: ऐसे मैं मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए उसकी झलक, उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
2: जी, तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: उर्मिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव, गिरगांव में
1: हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए, पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: आती थी, सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्यौहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्यौहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके, लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में

0: नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
1: अच्छा
0: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
1: अच्छा
0: तो इसीलिए जाना हुआ।
1: हाँ
0: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
1: जी
0: और
1: जी
0: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
1: ओ
0: अगर दादर में क्लास होता
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
1: अच्छा
0: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
1: वाह
0: पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
1: जी
0: वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
1: जी
0: तो
1: जी
0: SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
1: हाँ
0: दिल्ली में,
1: हाँ
0: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
1: संगीत शारदा
0: संगीत शारदा,
1: जी जी
0: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी,
1: ओ
0: ये मेरी
1: अच्छा
0: आवाज़ जरा भारी थी, जाड़ी थी,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: पुरुष के गायक के लायक थी
1: अच्छा
0: और हाइट भी अच्छी थी,
1: जी
0: तो मैं
1: जी
0: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
1: जी जी जी
0: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
1: हाँ
0: स्कूल
1: चूंकि ये महिला
0: के
1: विश्वविद्यालय है
0: महिला
1: तो
0: विश्वविद्यालय, नहीं
1: सारे
0: वो है स्कूल की बात कर रही हूँ,
1: अच्छा
0: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
1: अच्छा
0: तो वो हमने उधर किया
1: ओहो
0: यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
1: हाँ
0: दिल्ली गई यूथ
1: क्या बात
0: फेस्टिवल के,
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी
1: अच्छा
0: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ,
1: हाँ हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर
1: सकें।
0: जरूर,

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती
1: थी। पुरुष पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका
2: इस
1: नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था।
1: जी, जी।
2: हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए। तो हम 10-12 लड़कियाँ खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे। अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
2: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके।
1: जी, जी।
2: तो म्यूजिक का एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की।
1: हाँ।
2: तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई। फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया और मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है।
1: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह

0: उससे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी
1: अच्छा।
0: बच्चों को।
1: हाँ हाँ।
0: तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
0: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी रुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहाँ पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी कि हमने चलेगी
1: दौड़ेगी
0: कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
0: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लीजेंड्स है
1: जी जी,
0: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
0: मराठी में गाने थे
1: जी
0: हाँ।
1: जी

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: गए। फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार, तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीका का।
0: हाँ।
1: उनके तो क्या किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए, तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
0: हाँ।
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी। तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज, तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम। तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी जी
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस किया उनको,
0: जी जी।
1: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहाँ शेर कैसा है, इधर उधर इधर सब घूमते हैं, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि आपने तीन चार गाने गा के ये लोगों सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
1: ड्यूएट नहीं गाया,
0: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, वो दूसरों
0: मतलब
1: की
0: टीका टिप्पणी की, आप जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ
1: हाँ, उसकी वजह यह है कि लोगों को टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे
0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी।
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं,
0: जी,
1: तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो लिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: अच्छा
1: मेरी सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो,
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता
0: क्या
1: है,
0: बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो,
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है।
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब, अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो,
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है,
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी
0: अच्छा
1: कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ, तो
1: है।
0: इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है,
0: अच्छा
1: अलका
0: अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका
0: हाँ
1: याग्निक
0: हाँ
1: का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगा कर है इस फिल्म का
1: दम लगा
0: गाना
1: के
0: है।
1: हैसा
0: जी
1: उसका,
0: जी गीत
1: नहीं,
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ,
0: हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: है, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा
0: है,
1: से
0: ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की
1: नहीं
0: नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी गीता
0: हाँ,
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद है
0: आशा जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में
1: हाँ
0: भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से, तो
0: जी,
1: वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल
1: हूं
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि
0: अनुभव आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा नहीं
0: हाँ
1: होना
0: हाँ
1: चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही लता
0: बिल्कुल,
1: मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौबड़े
0: हैं,
1: में
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी
0: क्लासिकल सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, फिर जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट, और
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: समझो
0: जी
1: वराइटीज, वो
0: हाँ
1: करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज की तैयारी भी हो

0: जाती है,
1: हाँ
0: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है, मैं भी गाती हूँ, वो गाना नहीं होता,
1: हाँ हाँ
0: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
1: खैर
0: अभी।
1: बिल्कुल सही।
0: है तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
1: जी
0: वो
1: जी
0: क्यों करते थे इतना,
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही गाते थे
1: सही बात,
0: ना।
1: बिल्कुल सही। मन्नदा की बात करते हैं,
0: जी
1: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
0: मन्नादा के
1: किया,
0: साथ, हाँ
1: संगीतकार थे श्री रामचंद्र,
0: श्री रामचंद्र।
1: तो मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया है?
0: एक शो किया बड़ौदा में,
1: अच्छा
0: हाँ
1: हाँ
0: बड़ौदा में, मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
1: हाँ
0: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
1: हाँ हाँ
0: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
1: जी जी
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो
1: हाँ
0: फ्लैट लगेगा और उस
1: जी जी
0: भाव नहीं आएंगे उसमें,
1: हाँ
0: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है किसी के आवाज़ में, तो मैंने मन्नादा को पूछा कि मन्नादा ये कैसा लाने का अपने आवाज़ में,
1: हाँ
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ, और
1: अच्छा
0: मेरे आवाज़ में अपने आप आ गया वो सब
1: ओ
0: रियाज करके,
1: क्या बात।
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला
1: हाँ
0: कि ज़्यादा नहीं करना, लेकिन
1: हाँ
0: तो कंप होगा तेरे आवाज़ में। बहुत ही
1: अच्छा
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: हाँ
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, ये
1: हाँ
0: शील सजणे सजणे
1: हाँ
0: माझाच पाठी,
1: बिल्कुल,
0: ये
1: उनके
0: लाइन
1: लिए
0: थी।
1: टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत
1: रहा वो।
0: बहुत 3 बार हुआ, ठीक 4 बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा, अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं वो
1: हाँ हाँ
0: उनको
1: हाँ
0: बराबर ये
1: नुक्ता लगा
0: करके
1: के,
0: लाइन
1: क्यों
0: में,
1: ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें।
0: हाउस ऑफ बैम्बू
1: जी जी
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर नंबर 54, द हाउस जिसे मॉड्यूलेशन
1: हाँ
0: फोर की उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है,
1: जी जी जी
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर हो, बांबू से घर बांबू से दार, बांबू ची जमीन पिरुळी शार, बांबू से घर बांबू से दार, बांबू ची जमीन पिरुळी शार, बांबू चा घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला, झुलवित राहिल पापा पापा तुलानी मला, नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो
1: और
0: क्या
1: वाह वाह,
0: क्लासिकल
1: मन्नादा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते
0: सिंगिंग,
1: हैं,
0: जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है,
0: हाँ
1: मगर प्योर क्लासिकल
0: उनका
1: गाने
0: प्योर
1: जिनको कहा
0: क्लासिकल
1: जाए, जो
0: बहुत
1: लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे
0: लेकिन
1: उनके कई गाने हैं।
0: दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे,
1: जी बिल्कुल
0: क्लासिकल
1: बिल्कुल,
0: गाने हैं ऐसी बात नहीं,
1: बहुत से दिए।
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या
1: जी
0: भारीपन था आवाज
1: जी
0: में,
1: जी जी
0: वो उस पर बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी जी
0: मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, ऐ मेरे प्यारे वतन,
1: वाह
0: बहुत अच्छे, थोड़ा सुना दे।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग
0: जाता
1: जाएगा
0: है तो।
1: और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी
0: बहुत ही
1: लिखावटी,
0: संजीदा गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी। प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको
1: जी
0: मंच पर गाने का मौका
1: जी
0: मिला
1: जी
0: है। हम रफ़ी साहब को अभी याद करते हैं, रफ़ी साहब के साथ
1: रफ़ी
0: आपकी
1: साहब तो मेरा
0: यादें।
1: सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट
0: अच्छा
1: कॉर्नर है उनके।
0: अच्छा
1: उनके साथ बहुत सारे टूर किए,
0: हाँ,
1: साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए
0: ओहो
1: रफ़ी साहब के
0: क्या
1: साथ।
0: बात। हाँ
1: और जो उनसे सीखा है ना,
0: जी,
1: मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी।
0: ओहो
1: हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव।
0: वाह
1: और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक
0: जी,
1: पत्रकार परिषद थी,
0: हाँ हाँ
1: कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
0: जी।
1: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे?
0: जी
1: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना,
0: हाँ,
1: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और
0: ओ
1: क्या करूँ, और किसे
0: क्या
1: कर,
0: बात,
1: किसमें हाथ क्यों डालूँ मैं?
0: विनम्रता की हद है।
1: हद है, हद है।
0: ओ हो,
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: वो
0: जी
1: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है।
0: हाँ
1: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
0: हाँ
1: तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी।
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफ़ी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
0: जी,
1: है।
0: क्या बात, वाह
1: बहुत
0: वाह।
1: अच्छा
0: अब
1: लगा
0: रफ़ी साहब के इतने सारे गाने हैं,
1: जी।
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज़्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे
0: हाँ
1: सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
0: विक्टोरिया
1: मिल
0: नंबर
1: गए
0: दो
1: हो,
0: सौ तीन हाँ
1: हाँ,
0: जी, हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी।
1: हाँ,
0: हंसते
1: हंसते
0: ज़ख्म,
1: जख्म,
0: जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: हंसते
1: और
0: ज़ख्म फिल्म
1: हाँ
0: का, जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 major surgeries, उसमें 2 heart bypass, 2 aneurysm करके है और 2 kidney stone की। उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था, स्ट्रेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की। डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
2: घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
2: और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
2: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
2: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
2: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे। तो ऐसे सब होके भी उन्होंने ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: इतना
2: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी,
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे साथ।

0: वो छोटी थी दोनों,
1: हाँ
0: तो उनका जाते हैं उनके पास, मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा,
0: हाँ मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गया,
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते हुए
0: उन्होंने
1: देखा
0: गाते
1: सुना
0: देखा
1: है
0: तो उन्होंने
1: तो
0: वो
1: उनके
0: भी
1: अंदर वो
0: गाती
1: अपने
0: थी
1: आप,
0: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे
1: अरे
0: नहीं
1: वाह
0: कि
1: क्या
0: कशा
1: बात
0: क्यों
1: है,
0: आए ऐसे
1: क्या
0: ऐसे
1: बात
0: नहीं। और
1: है।
0: हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी
1: हाँ
0: ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: बड़ी
1: है
0: बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं ये
1: क्या बात है, क्या बात,
0: वह
1: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
0: बहुत बड़ा
1: क्या बात। जी जी
0: कॉम्प्लीमेंट।
1: जी अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा? आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हम
1: कोई
0: लोग
1: गाना?
0: तीन डुएट भी गाते थे,
1: जी,
0: वो मन क्यों बहका रे बहका वो है,
1: ओहो क्या
0: फिर
1: बात,
0: कजरा मोहब्बत वाला वो है,
1: हाँ
0: फिर अन्ना
1: हाँ
0: जी का अपलम चपलम, वो उस पे डांस भी
1: क्या
0: बताता
1: बात है,
0: मेरे
1: क्या
0: शो में,
1: बात है,
0: ऐसे सब डुएट डुगाने हम लोग ने। तो
1: क्या बात।
0: वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे।
1: वाह
0: हाँ फिर उसी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो, पंख
1: अच्छा
0: होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
1: अच्छा
0: में,
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत लोगों को पसंद
1: तो क्यों
0: आता
1: नहीं
0: था।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
0: अरे
1: को।
0: बाप रे।
1: हाँ रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।

0: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
3: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
0: विविध भारती पर हर पल है खास।
4: आज के मेहमान
2: और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
5: आज के फनकार।
0: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: सुनिए,
8: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी।
8: कहिए ना।
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
8: शुक्रिया, शुक्रिया।
9: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। कांग्रेस के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कृतियानिया, खुदीराम टुड्डू और निशित प्रमाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
1: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोईचीशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेन्नई में आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं

0: जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 करोड़ रुपए के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धनशोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147 के बजाय 144 अंकों से हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे भजन संध्या। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युव मंच रहेगा 5:30 पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:05 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम लेकर, सफर सुहाने, गाने नए पुराने। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत, रौनका गराई दिया, ये कार्यक्रम रहेगा शाम 7:25 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 8 बजे से लेकर 8:45 तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, News@9 रात्रि 9 बजे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आज रात्रि 10 बजे कार्यक्रम रहेगा रंगे गजल। 10:30 पर आप सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम चांदनी रातें, और देर रात 11 बजे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी। आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत, भजन संध्या।

भजन संध्या सुनने वाले सारे श्रोतियां दा अज दे इस कार्यक्रम च अहें स्वागत करदे। अज दे इस शाम संध्या च मैं रहना तुहां कन्ने तुहां दे अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा। विशोतियो जिथे जे भक्ति हुंदी तिथे शक्ति जे इस अपने आप ही आई जांदी। भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि मना दी सच्चाई आत्मा दी पवित्रता दा नाम है। तो आवा इसी भावना कन्ने सुनदे हन इस कार्यक्रम दी पहली प्रस्तुति।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र दे तुहा इस वक्त सुना दे भजन संध्या। भजन संध्या दे मधुर स्वर जैसे, मधुर धुना जैसे मना जो भीतर तक छुई जांदियां, कने एड़ा लगदा मना हर स्वरच भगवान दा आशीर्वाद जैसे समाई गया हो। आवा सुनदे इस कार्यक्रम का अगला मनमोहक भजन।

जीवन च सुख हो चाहे दुख हो, अगर भगवान दा साथ कने आशीर्वाद आना तो हर राह जैसे आसान लगने लगती। इसी विश्वास कन्ने श्रद्धा सौगी आवा सुनदे ने इस कार्यक्रम दा अगला आखिरी भजन है।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है युवाओं के लिए कार्यक्रम युवमंच।

युवमंच कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। युवा श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा। श्रोताओं, ये कार्यक्रम है आपका अपना पसंदीदा, एक ऐसा कार्यक्रम जहां बातें होती हैं युवाओं की, प्रेरणा मिलती है हमारे इतिहास और प्रकृति से। युवा श्रोताओं, आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारे साथ तीन ऐसी बातें जुड़ी हैं जो हमें उड़ान भरना, लड़ना और देश की सेवा करना सिखाती हैं। आज हम बात करेंगे आसमान के उन नन्हे मेहमानों की जो सात समंदर पार से आते हैं। याद करेंगे मेवाड़ के उस शेर को जिसकी दहाड़ से दुश्मन कांपते थे, और जानेंगे उस महान गुरु को जिन्होंने गांधी जी को राजनीति

युवा श्रोताओं, आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी केवल प्रकृति की सुंदरता ही नहीं बढ़ाते, बल्कि वे हमें स्वतंत्रता, साहस और संतुलन का संदेश भी देते हैं। हर वर्ष मई और अक्टूबर महीने में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को पक्षियों के संरक्षण के बारे में जागरूक किया जा सके। प्रवासी पक्षी कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो मौसम बदलने पर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं। कड़ाके की ठंड, भोजन की कमी या अनुकूल वातावरण की तलाश में ये पक्षी हजारों किलोमीटर दूर देशों तक पहुंच जाते हैं। भारत में साइबेरिया, यूरोप और मध्य एशिया से कई पक्षी आते हैं। इनमें साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो और पेलिकन जैसे पक्षी अमूमन हैं। सोचिए श्रोताओं, इतनी लंबी यात्रा बिना किसी नक्शे के और तकनीक के, और ये यात्रा करना कितना अद्भुत रहता होगा ना। ये पक्षी प्रकृति के सच्चे यात्री हैं। पक्षी प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बीज फैलाने, कीटों को नियंत्रित करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन आज प्रदूषण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक कचरे के कारण इन पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ता जा रहा है। तालाब और झीलें सूख रही हैं, जिससे प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित ठिकाना मिल नहीं पा रहा। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति और पक्षियों की रक्षा करें। बात करते हैं कि युवा श्रोता कैसे इस दिवस के प्रति अपनी भूमिका निभा सकते हैं। पेड़ लगाना, उनकी देखभाल करना, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना, पक्षियों को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक का कम उपयोग करना, गर्मियों में छत या आंगन में पानी रखना, लोगों को पक्षियों के संरक्षण के लिए जागरूक करना। याद रखिए, जब पक्षी सुरक्षित होंगे तभी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी। श्रोताओं, पक्षियों की उड़ान हमें ये सिखाती है कि यदि हौसले मजबूत हों तो लंबी से लंबी दूरी भी तय की जा सकती है। प्रकृति केवल हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। यदि हम आज पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी पक्षियों की मधुर आवाज और सुंदर उड़ान का आनंद ले सकेंगी। श्रोताओं, प्रकृति से हमें प्रेम करना चाहिए, पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। इसी संदेश के साथ आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं।

0: युवा श्रोताओं, इस गीत से पहले हमने बात की उन सैलानियों की जिन्हें ना तो पासपोर्ट चाहिए ना वीजा, सिर्फ अपने पंखों पर भरोसा। जी हाँ, प्रवासी पक्षियों के बारे में। युव मंच कार्यक्रम में अब वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युव मंच। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जी हाँ श्रोताओं, अब बात करते हैं स्वाभिमान के उस हिमालय की जिसे दुनिया महाराणा प्रताप के नाम से जानती है। आज उनकी जयंती है। इतिहास गवाह है कि उन्होंने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर अपनी मातृभूमि का सिर कभी झुकने नहीं दिया। उनकी वीर गाथा की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध, मुगलों की विशाल सेना के सामने राणा का साहस, बात करें चेतक की, वो घोड़ा जिसने अपने स्वामी की रक्षा के लिए नाले को एक छलांग में पार कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। युवाओं के लिए प्रेरणा की बात करें तो महाराणा प्रताप हमें सिखाते हैं कि सुख सुविधाओं से बढ़कर अपना आत्मसम्मान और स्वतंत्रता है। विपरीत परिस्थितियों में टूटना नहीं है बल्कि लड़ना है। शौर्य के बाद अब बात करते हैं सादगी और ज्ञान की। आज महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती भी है। अक्सर हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं, लेकिन गोखले जी भी वो सितम थे जिन्होंने भारतीय राजनीति को नैतिकता का आधार दिया। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनके विचारों की बात करें तो शिक्षा पर जोर देना, उन्होंने कहा था कि जब तक भारत का युवा शिक्षित नहीं होगा, आज़ादी अधूरी रहेगी। उनकी वाणी में इतनी मिठास और तर्क थे कि अंग्रेज भी उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते थे। बदलाव लाने के लिए हमेशा तलवार उठाना जरूरी नहीं, कभी कभी ज्ञान और अहिंसा सबसे बड़े हथियार होते हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो श्रोताओं, आज के इस युव मंच कार्यक्रम में हमने तीन बड़ी बातें सीखी। प्रवासी पक्षियों से सीमाओं को लांघकर लक्ष्य को पाना, महाराणा प्रताप से कभी हार ना मानने का जज्बा, गोपाल कृष्ण गोखले से ज्ञान और विनम्रता की शक्ति। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके दिल को छुई होंगी। इन महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलकर ही हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं। युवा श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का। रखिए अपना और अपनों का ख्याल। दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त नेहा मिश्रा को। नमस्कार।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: खैर, इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: मंथली। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
1: बन गया बजट?
0: हाँ 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
0: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
0: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
0: जाओ भाई।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के भी निर्देश दिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी इस मौके पर मौजूदगी दर्ज की। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सौदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश के शहरी निकायों में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनाव में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा है।
1: नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है, क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई।
0: दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई जबकि शिमला से धर्मशाला के लिए सोमवार 11 मई से शुरू होने जा रही है। दिल्ली शिमला हवाई सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन जबकि शिमला से धर्मशाला के लिए मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि

0: इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में महासू आर्ट की वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवास पर रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है, जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
1: कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है, और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है, प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी, तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा वो सबको मान्य होगा।
0: भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में 1 प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों को उन तक पहुंचाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

जहां संगीत के रंगों में घुल जाती हैं यादें, यादें वो जो हैं पुरानी और धड़कनों में बस जाते हैं नए तराने। ऐसा ही एक कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं श्रोताओं, जिसका नाम है सफर सुहाने, गाने नए पुराने। नए गानों की धुन हो या पुराने गीतों की महक, संगीत हर दौर में दिलों को जोड़ने का काम करता है और हमारा यही प्रयास है कि आपका ये सफर हमेशा सुहाना बना रहे। आइए श्रोताओं, शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस गीत के साथ।

सफर सुहाने गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। श्रोताओं, कभी कभी किसी खास इंसान से हुई छोटी सी मुलाकात भी दिल में बड़ी खूबसूरत जगह बना लेती है। उनसे बातें करना,

की आवाज सुनना और उनके साथ बिताया हर पल बेहद खास लगने लगता है। तो आइए प्यार और मीठे एहसासों से भरे ऐसे ही एक खूबसूरत गीत के साथ इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। श्रोताओं, सफर चाहे छोटा हो या लंबा, अगर उसमें प्यार, यादें और मधुर गीत शामिल हों तो हर पल खास बन जाता है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अगला गीत।
1: धड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई, हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग लग

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ये सुहाना सफर यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: शेर सिंह भड़का जी, राम राम।
1: राम राम राम राम भाई जगतुबा, राम राम। खरे
0: ओ बहुत बढ़िया भाई, जे मैं कुछ और मंगे हुंदा ना जे तो
1: हाँ,
0: मिली गया आज।
1: ओ देखना एड़ा वे सहजे भाग भूत कर नसीब होने तीजो नहीं कोई गवाए सकता है।
0: बिल्कुल ठीक, मैं
1: है
0: याद ही हले गिरा करता। मैं
1: हाँ
0: ले रहा भड़के ते पूछिए हाल चाल भी, कणकारा केड़ा रहा ताम जाम। कने भाई बरखा ने थोड़ी जी दिक्कत हुई है।
1: दिखारा जगतुबा गालेड़ी ना पे, जे मौसम हुंदा भरने दा
0: जी
1: तभी मनिया
0: मन्नी अंदर।
1: सहजे भाई आहे पीछे ते दिखदे आए अज तई। ये जे 5-7 साल होए ना
0: आहो
1: इस ते ये सारा हिसाब किताब जी ऐसे थोड़ा ऊपर थल्ले चली
0: ओली
1: गया
0: गया बदली गया थोड़ा बहुत है।
1: है।
0: हाँ ठीक लाग
1: भाई
0: रहा।
1: मिया देख मैं ही महीना लगी रहा है, अद्धा हो आया लाई पाई ने है,
0: आहो ठीक ला दे, ठीक ला दे।
1: कहने कोटियां पाना पौ दे
0: बीच बीच लगे भाई
1: ओ
0: जरूर।
1: कंबल लेना पौ दे मिया
0: और ऐसे सारे पैक है करते रहे
1: है।
0: तो दोबारा कटने पे बरखा
1: बिल्कुल
0: च
1: ए पारा रिड़ियां दिख देती ना दौलादार दियां पहाड़ियां तो
0: चिटियां लग रही
1: चिटियां हो ही रही
0: हो।
1: है।
0: ठीक ला दे भड़का जी। उन्हें मतलब किती ना किती मौसम दया सजे परिवर्तन आ, कने जलवायु जे ऐसे कुछ ना कुछ परिवर्तन होया था है ना, तो ये संकेत कोई खरे नहीं लगा दे भड़का
1: खरे
0: जी
1: नहीं है
0: है
1: कहने एक गल जरूर गलानी पाए जगतुबा ना भाई,
0: जी।
1: तीन जे मौसम हो ना ती दे साहब बने रहन ठहन जैसा जरूरी
0: हाँ
1: है
0: जरूरी है, जरूरी है,
1: हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: पे
0: महाराज।
1: देख ठंड जी होती तो कदे ही ठंड होती सह बुजुर्ग गलाई रे ना
0: जी
1: भाई, रेत करेत जदी भरे तदी सीत
0: सीत। हाँ बिल्कुल ठीक लाया तिने,
1: है।
0: बिल्कुल
1: ताजे ठंड होती तो भाई तिसते भी बचाव करना
0: कहने जे
1: कने
0: गर्मी लगा दी तो भाई तिसते भी बचाव
1: तिसते भी।
0: करना।
1: पर ए आपे ए जे बदल दा मौसम है ना ए
0: हाँ
1: ना ता आहजो खरा माणु माजो ना माल लो, कहने कणक ता मिया एड़ा बे सजे मोटी मोटी ले ले ही पहले
0: सह तो हंधी हुई
1: आ
0: ठीक
1: सहता गई निकले। कहने ए
0: हाँ।
1: कुछ बड्डी री लगी री खराब होना कुछ खड़ोती री लगी री खराब होना
0: तो बस यही तो समस्या
1: है।
0: भी, ये पेड़ों च पाऊंगी भी कि नहीं पाऊंगी है।
1: चलो सही गाल दी ना
0: हाँ
1: भाई, मिया अथा दे तक हो ही
0: खोई
1: सकता ना
0: सकते,
1: कोई
0: हाँ कुछ
1: है
0: मता ते नहीं ले
1: पर
0: सकते
1: बे मत्थे ते नहीं है।
0: महाराज। बिल्कुल ठीक ला
1: हाँ
0: दे परेड़ा ना बड़का जी। हूँ देखो सहजे आंदे थर्डे पासे भाई उत्खता तीने थारा काम करी ने निपटाई तेरा,
1: ठीक बोल
0: हूँ आहाँ
1: रहे
0: जो थोड़ी ये समस्या हुई भी उन्हें बरखा जी आएगी ना बेवकूफी
1: हाँ
0: तेथी थोड़ी दिक्कत हुई, पर चलो आह जो तो अपनी चिंता है उपर वाले जो सारे की चिंता
1: सारे दी
0: है।
1: कने इन्या भी जग तू गालेड़ी ना पे काली नहीं करनी
0: नहीं करनी
1: है।
0: बिल्कुल।
1: चलो कोई नहीं बरखा हो दी ठमकों गई
0: ओ
1: खड़ी जे ही
0: ठमकोना
1: तहता चलो ओ ही
0: वही
1: आना कुछ
0: आंगी, पर है
1: बड़ी
0: जे
1: रिजा जो
0: बड़ी
1: थोड़ा
0: सह समस्या
1: नुकसान
0: है।
1: हो
0: ठीक ला
1: सकता
0: दे, पर
1: है।
0: चलो त्रिपाल ने ढकी तिरी, पर फिर भी
1: हाँ
0: चाहे जितना चाहिए उतना जो शायद नहीं मिले परिणाम, पर
1: बिल्कुल
0: अभी फिर भी सुरक्षित होगी।
1: हाँ।

0: बिल्कुल
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: सेफ
0: ढकी
1: होगी
0: ढुकी
1: मतलब।
0: देनी बद जाना।
1: बिल्कुल
0: बाकी
1: बिल्कुल,
0: चलो सही गल भी सहजे होना दाना हंदा सहती साने
1: नसीबत
0: है
1: आना ही आना। कहने
0: आ
1: देखो बड़के एक गल पता क्या हुई,
0: हम्म।
1: बई मैं दो चार खेत रेड़े रखी रहे थे थी जे, मैं अपने है मल्स थी कने केंचुआ खाद थी है,
0: अच्छा
1: मतलब
0: ठीक
1: जैविक खेती पर ज्यादा ध्यान दे दिया।
0: हम्म।
1: और मिंजो भाई एड़ा फील होया, एड़े मिंजो अनुभव होया कि भाई वाकई सहजे आंदा जैविक उत्पादन है, तीसो जे आहे अपनी खेती बाड़ी चलांदे तीसदा भाई बड़ा भारी फायदा महाराज, बढ़िया मोटा दाना
0: ठीक बोलो
1: क्वालिटी आला
0: ठीक
1: कन्ने
0: बोलो
1: भाई बिल्कुल तंदुरुस्त, और मजा आई है मतलब कम दा।
0: मियाँ, जगतुबा गालेड़ी ना, ये जे पहल के टाइम थे ना हंदे, त्याड़ी ए गोई दी खाद चलदी थी
1: जल्दी ही
0: है,
1: बिल्कुल।
0: गोए दी मलसी खेतरा दे मुखा खड्डा खुणना, फिर तिसची सटना, फिर
1: सटना
0: तिसची तीस मतलब अपने आप ही तिसची गुज्जे चिट्टे जे पैदा होंदे
1: जी जी जी जी
0: है,
1: बिल्कुल
0: कहने बद जा पुआजा होना,
1: पाजा हुंदा
0: पुआजा तो होना सहजे मिट्टी तिस दे
1: हाँ,
0: गुण जे
1: बिल्कुल सह बरकरार रहने।
0: सह भी बरकरार रहने
1: ठीक ला
0: है,
1: रहे, ठीक ला रहे,
0: फसल जे तिहा खाई ने अहां जो कोई नुकसान नहीं होना
1: हाँ कने
0: है
1: टेस्ट भी देखो क्या
0: ते
1: है, मजा मतलब
0: बिल्कुल
1: ये लगता वाकई भाई हाँ बढ़िया जहा अनाज खा रहे।
0: हाँ, कहने दिख सहजे पर्यावरण आंदा
1: जी
0: तिस जो भी कोई नुकसान
1: नुकसान
0: नहीं
1: नहीं है बस
0: है,
1: बिल्कुल।
0: नहीं तो दिखे तो ये हूं जे चली रही कई कीटनाशक को कोई कुछ चाहिए
1: जी,
0: सता भाई जे कठोर भी मारा था पक्षी तो पुट्ठा होने पे ही
1: पे
0: आना
1: याद बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल बड़का
0: मतलब
1: जी।
0: तिना जो भी नुकसान हो दा, ता ए जे तैं बोली कैंचुआ खाद ए बिल्कुल ठीक तैं बोली, ए दुनिया जे आहे रसायन यूज कर देना तिना ते 100 दर्जे
1: सौ
0: खरे
1: दर्जे भाई बिल्कुल बड़का
0: है
1: ही। और दिखा तू हाँ गल की ना भी यहाँ दे पर्यावरण जो भी अच्छी यहाँ दे मिट्टी जो भी खरी, तो ये
0: हाँ
1: दिखा मिट्टी दी है जी संरचना है तीसो भी सुधार दी बड़का ही
0: बिल्कुल
1: है। हुण
0: बिल्कुल
1: दिखा एक बड़ा आवश्यक तत्व होंगे तीस जो शायद मतलब बरकरार रखने वास्ते सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जैविक खाद है,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: इससे दिखा क्या क्या सुधार होंगे, एक तरह की नमी बनी रहती भाई
0: हाँ बिल्कुल
1: पर्यावरण जो भी अच्छा है,
0: आ
1: सूक्ष्म जीवों की भी वृद्धि होंगी,
0: वृद्धि
1: पौधे की बेहतरी भी होंगी
0: हम्म,
1: कने लागत भी भाई घट
0: काट
1: है
0: ठीक बोल रहा था
1: तो
0: ठीक
1: दिखा फिर
0: बोल रहा
1: फायदा ही नहीं है।
0: फायदा, कन मैं सही बोला था ना पे कैंचुआ खाद बनाना जे ना तो सह भी कोई बड़ा भारी पहाड़ नहीं है,
1: हाँ
0: गल
1: भी
0: ही ना
1: बड़ी बड़ी साइंस
0: तेरा
1: नहीं
0: पे
1: जिस।
0: कई बारी भी कोई तेरा बड़ा चीज थोड़ी
1: हाँ ठीक
0: है
1: ला रहे, ठीक
0: भाई,
1: ला रहे
0: दिख जे मन लाइने काम करना हो ना बच्चा
1: जी
0: है
1: जी
0: ता से तेरा बोल भी बड़ी बड़ी चोटियां भी फतेह हो
1: फतेह
0: जानी
1: हो
0: है
1: जाती बिल्कुल तू
0: हाँ
1: ठीक लाया भड़काई। तो चलो एडा ना भाई साहब
0: हाँ
1: बे ए ता हाँ गल कर दे, पर ये जे रेडियो ले रहा कने घर जो भी चल दे धीरे धीरे
0: चली
1: वो गपशप
0: पौना
1: करते करते
0: नहीं
1: गाना भी
0: नहीं
1: सुन
0: चली
1: लेना है
0: पौना
1: ना,
0: चली
1: एडा
0: पौना चली
1: करते
0: पौना
1: फिर
0: हाँ
1: है
0: तिंज कर लाई दे
1: तब
0: तू
1: तब बड़ा आवाज तो तुम्हारे होना तुम्हारे कन्ने
0: बैठे
1: है।
0: ठहर ता ठहर ए ए ए
1: आ
0: ए ले
1: वाह वाह
0: ए ले
1: भड़का जी वाह वाह।

0: Fai giacca tu per Rana,
1: Sì, perché?
0: fai racchieri se la fa feci pai,
1: Ah,
0: e me
1: meglio
0: li
1: pure io
0: andi.
1: metti,
0: Ah.
1: me le babbi era pulini sakdi
0: Ne,
1: maraj,
0: ne, ne,
1: eh?
0: ne,
1: Per
0: ne.
1: già, andi बहुत बढ़िया कहने देखो मैं कितने अड़का खिला रहा कोई हफ्ता ही हुआ कहने
0: अच्छा
1: मिंजो लगे मेले ये
0: ने
1: जा
0: ने
1: पर महीना लगे ना पर नहीं रखी ले रहा
0: रखी
1: है
0: रे रखी रे कने ए
1: ये
0: रखना।
1: ठीक है।
0: अच्छा एक चीज हो रही, जे मिंजो इक्की रोटी ज्यादा जरूरत थी, जे मैं कितनी थी खा लिया तीन रोटियां
1: ता नहीं
0: तो
1: भाई
0: मिंजो नुकसान
1: ता
0: हो
1: और नुकसान होना नहीं है
0: मंदा
1: मंदा महाराज।
0: ता यही गल ए जे कैचुआ खा दी ना
1: अच्छा
0: इस पर भी लगती भाई
1: ये तो ठीक ला दे तू। हाँ
0: है
1: ठीक ला दे
0: मन्या
1: महाराज।
0: खेतर आ खेतरा दा आकार आ जे तीस चीज जरूरत ते ज्यादा चीज पाई है नहीं
1: जी
0: तो है नुकसान।
1: मेरी गल दसूँ तू जो ये तो बड़ी अच्छी गल पकड़ी कि केंचुआ खाता हाँ जो बनेगी
0: बिल्कुल
1: पर तीस दा इस्तेमाल क्या करना किया
0: हाँ
1: करना सह कई
0: जरूर
1: बार आज पता नहीं
0: पता
1: रहता
0: होना
1: है।
0: चाहिए
1: हूँ
0: भाई।
1: दिखा केंचुआ खा दिया खेतरे च भी लगानी
0: और
1: आहा अपने क्यारियां च भी लगानी आहा
0: गमलिया च
1: गमले
0: पा
1: गुमले च भी लगानी पेड़ पौधे
0: और
1: च भी लगानी
0: सारे ही
1: तो ये
0: ना।
1: बड़ी अच्छी गल तुहां कीती। और इससे देखो आंदे हजे वैज्ञानिक है ना बड़का ही सह क्या कहलांदे भी अगर आहा कोई खेतर जैसे जैविक खेती दे तरफ जाना
0: ठीक हो
1: कने
0: जाए।
1: आहा केंचुआ खाद का प्रयोग करना तो चाहे पहला साल होना ना कने
0: हाँ
1: 1 एकड़ भूमि मनी लिया भी यहाँ तो 1 एकड़ जमीन ही हरी
0: ठीक
1: है
0: हो लद
1: तो 30 च बड़का जी कहलांदे भी 20 क्विंटल केंचुआ खाद की दर से जो ऐसे आंजो 30 च छिड़काव करना पैंदा
0: करना
1: है।
0: ये आए ना सही गल है
1: हाँ
0: जे बिन्ने जे जगह ज्यादा पाए दिन तब
1: या घट
0: फायदे
1: पाए थी तां भी
0: हाँ
1: नुकसान है ज्यादा पाए
0: फायदा
1: थी तां
0: कुछ
1: भी
0: नहीं होया है ना जी
1: ठीक ला
0: मतलब
1: दे
0: दाल ची लूण खपदा ही
1: तरा लगता महाराज
0: है।
1: बिल्कुल। अच्छा दूजी गल पता क्या बड़काई पहले साल तो हाँ ये चीज करी ली
0: हाँ
1: हूँ 2 साल भी एडा भूल गए भी जी हाँ 20 क्विंटल डालनी तो गलत हुई है दूए कने 30 साल च 15 क्विंटल दी सजे तुहां दी केंचुआ खा दी
0: घटाई देनी थोड़ी थोड़ी
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: सह ते हुआ ये प्रति एकड़ की दर ते प्रयोग करनी। और एक गल ये है बड़का जी भी जिये जे हाँ अपने खेतरां च इन्हां चीजां जो पांदे
0: हाँ
1: केंचुआ खाद जो
0: ठीक बोल
1: तो क्या करना भी जल्दी जहाँ अपने क्यारियां च या गमलियां च
0: गमले
1: लगा
0: च
1: दे तो तिस्ते बात आली जे खाद पाई ली तो एडा नहीं भी है नंगी रखनी ऊपर ते कुछ
0: हाँ टकी
1: तकी
0: देना
1: देनी
0: पत्तर
1: ढकना भी
0: पुत्तर या वो आ उन का
1: हाँ
0: दा वाह हो जो होंदा ना
1: हाँ
0: थोड़ा जा टकी
1: ताकि
0: देना।
1: एडा नहीं भी बोरुआ ने ढकने
0: हाँ नहीं समझी जा
1: मतलब
0: मैं
1: तिस च थोड़ा बहुत घा पत्ते पाए
0: समझी
1: थे
0: जा मैं
1: थोड़े
0: हाँ समझ
1: बहुत
0: जा
1: चलाड़ू
0: जी
1: पाए थे
0: ठीक
1: या
0: बोल रहे
1: खजान दा वेस्ट मटीरियल या कचरा ही पाए थे चाहे है
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ये
0: बिल्कुल
1: पाना कहने भाई दिखा सबसे बड़ी गल क्या है कि अगर हाँ गमले च लगाना था तीन तो गलाया ना भी जमीन नरा आकार दिखना जमीन
0: हाँ
1: नरा
0: सारी
1: भूमि रा
0: चीजें
1: गमले रा ती सब
0: बिल्कुल
1: बने तो 20 क्विंटल आहे पा दे 1 एकड़ च तो अगर गमले च कर करिए तो तीस से 100 ग्राम ते 350 ग्राम पाना आकारा
0: बिल्कुल
1: दिखी ने
0: हाँ
1: थोड़ा
0: चलो
1: छोटा होगा तो 100 ग्राम बड़ा गमला होगा तो
0: हाँ तो
1: 350 ग्राम
0: 350 ग्राम
1: है
0: ठीक बोल रहे
1: तो ये
0: ठीक
1: बढ़ के देखो है। और
0: बिल्कुल
1: ये मतलब अगर हाँ इसको साइंटिफिक तरीके ने देखी है ना तो कितना

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले एक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इस जयंती के अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलक वेत्री कड़गम टीवीके ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए 120 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके को नई सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु विधानसभा के 234 सदस्यों में से बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को

0: होगा जबकि पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेल अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन भी शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के 7:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रौनका ग्राइंदियां।

रौनका ग्राएं दिया। ये कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो रितु कपिल दा नमस्कार है, राम राम। श्रोताओं, अज असां इस कार्यक्रम च गलबात करनी मौसम दे बारे च कने खान पान दे बारे च, क्योंकि मौसम कने खान पान दा मानव दे जीवन पर जे असे बड़ा गहरा प्रभाव है और इन दोनों दा बड़ा गहरा संबंध है। दिखो जी, मानव जीवन जे असे प्रकृति ने बड़ी गहराई कन्नै जुड़िया, कने से जी प्रकृति है तिसदे सार ते महत्वपूर्ण जे एक घटक है या बोली सकते है मौसम। तो मौसम केवल तापमान, वर्षा या हवा का नाव नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के सारे पहलुओं जो प्रभावित करता, खासकर हमारे खान पान। जो भारत जिहड़ा विविधता वाला जिहड़ा देश है, इत्थे अलग अलग जगह अलग अलग मौसम पाए जाते है ना, कने इत्थे दे खान पान दी परंपरा जिहड़ी सब बड़ी समृद्ध हैं, कने मौसम कन्नै बदलदियां रहिंदियां। तो इस गल्ला जो असें जे असें बड़े विस्तार कन्नै समझना कि कियां कियां हांदा मौसम जे असें बदलाव करदा, कने मौसम कन्नै कियां कियां हांदा खान पान जे असें बदलाव दी ओर बढ़दा। जी श्रोताओ, तो मौसम कने खान पान दा जेहड़ा रिश्ता है से बड़ा ही पुराना है, कने सुभाविक भी है। आंदे शरीर दियां जरूरतां मौसम दे अनुसार बदलदियां रहिंदियां। जियां गर्मियां दे मौसम च

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर ए एस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7:45 होने को हैं, थोड़ी ही देर में

0: यह एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लकी हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा। और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश विश्वविद्यालय के आपदा अनुसंधान केंद्र को बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने से मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को क्षमता निर्माण सुदृढ़ीकरण के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आपदा का विस्तृत अध्ययन, खतरा आकलन और तकनीकी मूल्यांकन से जुड़ी सभी राज्य स्तरीय अनुसंधान व विकास गतिविधियां विश्वविद्यालय के इसी केंद्र के माध्यम से संचालित की जाएंगी। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पर्यटन निगम के अध्यक्ष आरएस बाली भी इस दौरान मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि कोई भी विकास की मुख्य धारा से वंचित न रहे। वे आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के शुभारंभ पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक समरसता और समावेशी विकास अत्यंत आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे सम्मेलन समाज को नई दिशा देने और सामाजिक संवाद को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित भारत के निर्माण का मजबूत आधार बना है। दिल्ली से शिमला के लिए हवाई सेवाएं कल 10 मई से दोबारा बहाल होने जा रही हैं। ये सेवाएं मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन संचालित की जाएंगी। इसके अलावा शिमला से धर्मशाला के लिए भी सोमवार 11 मई से हवाई सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस रूट पर मंगलवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हवाई सेवाएं होंगी। इन सेवाओं के शुरू होने से राज्य में हवाई सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे राज्य में पर्यटन व व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की

0: घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय शासन सेवा वितरण में सुधार करने और सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से सतत विकास की दिशा में प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह ने कहा है कि प्रदेश में विकास पूरी तरह ठप है और कांग्रेस सरकार ने हिमाचल को आर्थिक रूप से दिवालिया करने का काम किया है। मंडी में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही है। सोदान सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर आम जनता के साथ धोखा किया है। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस जिन झूठी गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी, वही गारंटियां आज जनता के दिलों में पीड़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी और पेंशनरों सहित हर वर्ग कांग्रेस सरकार की नीतियों से परेशान है। प्रदेश में शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार लगातार जारी है। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन नगर निगम के तहत गंज बाजार में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 3.5 वर्ष की कार्यप्रणाली निराशाजनक रही है और इन चुनावों में सरकार की नाकामी ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
1: नगर निगम के चुनाव जो है वो हो रहे हैं, उनके लिए मुद्दों की कमी नहीं है क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा है। और सीधी बात है इसमें कि प्रदेश सरकार की 3.5 वर्ष की जो असफलताएं हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो अपने आप में मुद्दा है। शहर में मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान कांग्रेस की सरकार झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और झूठ बोल करके कॉरपोरेशन में भी आई।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश सहित प्रदेश में भी आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तरीकों से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में राज्य की सभी अदालतों में लोक अदालतें लगाई गईं। इन अदालतों में 140 बेंचों के समक्ष 110,260 मामले लाए गए, जिनमें से 65,793 मामलों का निपटारा किया गया। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में महासु आर्ट की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कला प्रदर्शनी आज शुरू हुई। 14 मई तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कलाकारों ने कैनवास पर रंगों के माध्यम से सामाजिक सरोकार, पहाड़ी संस्कृति और समसामयिक मुद्दों को उकेरा है, जो सराहनीय है। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के अपनी ही सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए वे इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगी।
2: कमला नेहरू हॉस्पिटल इसीलिए बनाया गया था कि जो विमेन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, उसकी केयर करनी है और आज भी इसी के लिए जाना जाता है। जब कोई महिला आती है प्रसूता होनी है, उसने बच्चे को जन्म देना है, तो उसको रेफर किया जाता है कि आप कमला नेहरू हॉस्पिटल जाएं। अब ये इंस्टीट्यूशन कहीं और तब्दील होगा तो स्वाभाविक है कि उनको तकलीफ होगी, तो इसके लिए जो भी डिफिकल्टीज है वो सरकार से बात करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और जो निर्णय वो लेगा सबको मान्य होगा।
0: प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं की वार्षिक परीक्षा का परिणाम कल 10 मई को घोषित करेगा। बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि परिणाम सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा और इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा। इस बार मार्च माह में 93,564 विद्यार्थियों ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। ग्रामीण विकास व पंचायती राज सचिव सी पाल रासू ने पंचायत चुनाव के चलते आज पालमपुर में स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल से जुड़े सभी निर्वाचन नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से शिमला में 2 दिवसीय मंथन मीट का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य तकनीक और नीतिगत सुधारों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाना है।

0: प्रोग्राम देते हैं, वो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं एमएसएमईज के लिए अपने क्षेत्रों में। सो पूरे देश के 55 DFO यहाँ पर मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किए हैं जो आपके यहाँ होटल में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं।
1: भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने के मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पार्टी कार्यालय के अनुसार धर्मशाला नगर निगम में 5 जबकि नाहन नगर परिषद में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार की प्राथमिक सदस्यता को निलंबित किया गया है। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए वॉर रूम बनाया गया है। वॉर रूम के प्रभारी हरिकृष्ण हेमराल ने आज अन्य सदस्यों के साथ कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वॉर रूम का मुख्य कार्य फील्ड में पार्टी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित अपडेट करना, दैनिक आधार पर चुनाव प्रचार से जुड़ी रिपोर्ट लेना और पार्टी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का उन तक पहुंचाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर दिया बल। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठी गारंटियां देने और प्रदेश को आर्थिक संकट में डालने का लगाया आरोप। राष्ट्रीय लोक अदालतों में राज्य में आपसी सहमति से हुआ 65,000 से अधिक मामलों का निपटारा और प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कल घोषित करेगा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
3: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
4: बुद्धू सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।
8: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
8: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
10: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
8: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
10: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
8: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी, और हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

पिछले हफ्ते आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपनी अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहां पुरुष सत्ता है, स्त्री को दासी या फिर विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है, जहां स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं होता। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ गई। पूरी कहानी मृणाल की जबानी है, सुनिए आगे। जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में दीदी के पास आश्रय लिया था, तब तुम लोगों ने सोचा था ये कहां की बला आ गई है ना? देखा, तुम लोग सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए ना कि उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन एकाएक जैसे कमर बांध कर खड़ा हो गया हो। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यहाँ ये अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। हाँ, बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है, तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो। उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे पतिव्रता थी, पतिव्रता। उनका ये संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखा कर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दिए कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है। ढेरों काम करती है फिर भी खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितृवंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसीलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमट कर रहती थीं। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जीजी कहने लगी, मझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर देगी। वे सबसे मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई अपराध कर दिया हो, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थी कि चलो जान बची, अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। तुम्हें तो मालूम है, देखने में वो इतनी कुरूप थी कि अगर वो फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की ही चिंता होती। और यही कारण है कि माता पिता के न होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता, और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई मानो संसार में उसको जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था।
इसीलिए वो हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहां उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वो फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। जो भी हो, वे लोग थे खूब। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी छाती धक धक करने लगी। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, ये बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई, लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो नहीं था, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने लाल लाल क्या निकल आया। शायद घमौरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वो बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो एक दिन तक धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो है, इसमें क्या, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़क कर क्रोध की मूर्ति बनकर गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वो एकदम अजर अमर कर देता है, बीमारी आने का नाम नहीं लेती। मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं, इसीलिए रोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं, लेकिन ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती हैं। बिंदु के मन से

जब मेरा डर जाता रहा तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया। वो मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी नहीं देखी। बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद ये कुरूप लड़की मेरे उस रूप के पीछे पड़ गई। दिन रात मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जी जी तुम्हारा ये मुंह मेरे अलावा और कोई नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती उस दिन वो बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी मुझे साज श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वो लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी ना थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गाब का पौधा निकला। जिस दिन देखती कि उस गाब के पौधे में नई लाल लाल कोपले निकल आई हैं, उसी दिन जान पड़ता कि धरती पर बसंत आ गया है। और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनाहत लड़की के मन का और छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी बसंत की हवा बहती है। बिंदु के स्नेह के दुसंवेग ने मुझे अधीर कर डाला था। मैं मानती हूं कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में मैं पहले कभी नहीं देख पाती थी। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। इधर मैं बिंदु जैसी लड़की को जो इतना लाड़ प्यार करती थी, ये बात तुम लोगों को बड़ी ज्यादती लगी। इसे लेकर बराबर खटपट होने लगी। जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ, उस दिन इस बात का आभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लज्जा ना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदु का हाथ है। जब स्वदेशी आंदोलनों में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी, तब तुम लोग अनायास ही ये संदेह कर बैठे कि बिंदु पुलिस द्वारा रखी गई स्त्री गुप्तचर है। इसका और कोई प्रमाण न था। प्रमाण बस इतना ही था कि वो बिंदु थी। तुम लोगों के घर की दासियां उनका कोई भी काम करने से इनकार कर देती थी। उनमें से किसी से अपने काम के लिए कहने में वो लड़की भी संकोच के मारे जड़वत हो जाती थी। इन्हीं सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया। मैंने खास तौर से अलग से एक दासी रख ली। ये बात तुम लोगों को अच्छी नहीं लगी। बिंदु को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी, उन्हें देखकर तुम इतने क्रुद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिए। दूसरे ही दिन से मैंने 125 जोड़े की मोटी कोरी मिल की धोती पहनना शुरू कर दिया। और जब मोती की माँ मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने खुद जूठा भात बछड़े को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बर्तन मल लिए। एक दिन एकाएक इस दृश्य को देखकर तुम प्रसन्न न हो सके। मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है, पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता। ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। एक बात याद करके मुझे आश्चर्य होता रहा है कि तुम लोगों ने बिंदु को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे। विधाता ने मुझे बुद्धि दी है। भीतर ही भीतर इस बात को माने बगैर तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था। अंत में अपनी शक्ति से बिंदु को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापति देवता की शरण ली।

हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आज आपने सुना इस कहानी का

0: दूसरा भाग वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
1: सुनो कहानी।

चित्रलोक कार्यक्रम को लेकर मैं हूँ आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज है और इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए बागी फिल्म का गीत मोनाली ठाकुर और मीत ब्रोज की आवाजों में। कुमार की रचना और धुन बनाई है मीत ब्रोज ने।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए इस अंतराल के बाद सुनिए अजहर फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजें। मनोज यादव ने इस गीत को रचा है, प्रीतम का संगीत।

निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है विधु विनोद चोपड़ा ने, शांतनु मोइत्रा ने इसकी धुन बनाई है। फिल्म का नाम वजीर।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं देव नेकी और परोमा दास गुप्ता की आवाजों में गब्बर इज बैक फिल्म का गीत। कुमार ने इसे लिखा है, चिरंतन भट्ट का संगीत।

गब्बर इज बैक इस फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में TVK नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107

0: रह जाएगी। हालांकि टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार 3री बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल

0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन

0: bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

अन्विता दत्त और कुमार का लिखा ये अगला गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है विशाल और शेखर ने। बैनी दयाल और नीति मोहन की आवाजें हैं। फिल्म का नाम बैंग बैंग।

शानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी अमित त्रिवेदी की, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और धुन बनाई थी अमित त्रिवेदी ने। इसी के साथ शीर्षक संगीत का ये कार्यक्रम आपके लिए यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक मखमली आवाज की।
1: बेचैन नजर बेताब जिगर

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

0: जाएगी।
1: तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे, तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम रंगे गजल।

रंगे गजल कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, ये कार्यक्रम है जहां हर एहसास को मिलती है सुरों की जुबान और हर दिल की धड़कन बन जाती है एक खूबसूरत गजल। अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर महसूस करेंगे मोहब्बत, यादों, तन्हाई और जिंदगी के कई रंग गजलों के संग। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की इस गजल के साथ।

कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ चेहरे तो बहुत होते हैं मगर अपना कोई नहीं लगता। भीड़ भरे शहर में भी दिल तन्हा रह जाता है और तब जन्म लेती हैं ऐसी गजलें जो हमारे जज्बातों को आवाज़ देती हैं।

कुछ रास्ते मंजिल तक ले जाते हैं और कुछ रास्ते हमें खुद से मिला जाते हैं। ये गजल भी कुछ ऐसी ही है जो अब आपके लिए हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। डीजे श्रोताओं अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रातें कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं श्रोताओं, क्या आप तैयार हैं आज के इस कार्यक्रम का सफर हमारे साथ जीने के लिए? भी तैयार हैं तो लीजिए, देर किस बात की। शुरुआत कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की इस रोमांटिक गीत के साथ।

वे श्रोताओं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं सिर्फ दिल से समझे जाते हैं, और जब मोहब्बत सच्ची हो तो उसकी गूंज हर धड़कन में सुनाई देती है। अब पेश है एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत नगमा जिसे सुनकर प्यार की गहराई महसूस होने लगती है।

चांदनी रातों में जब किसी अपने की याद दिल को छू जाए तो हर धड़कन एक मीठी धुन बन जाती है और वही एहसास लिए आ रहा है एक बेहद प्यारा नगमा।

मोहब्बत जब दिल की गहराइयों तक उतर जाए तो हर लम्हा किसी खूबसूरत गीत सा लगने लगता है, और कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो सीधे दिल से जुड़ जाते हैं।

श्रोताओं, चांदनी रातों की तरह ये मधुर गीत आपके जीवन में हमेशा प्यार, अपनापन और खुशियों की रोशनी बिखेरते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का चांदनी रातें कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।